नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय पर सुन सकते हैं।

0: इस समय सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रहतनाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा

द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: ये है विविध भारती
0: वंदन वार।

Shintan. अतीत में फंसना और भविष्य की चिंता करना दोनों ही वर्तमान को खोखला कर देते हैं, ये कथन ओशो का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 257। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला घुंघरू की तरह का भाग 2। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, प्रस्तुति रूपाली रूपक। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 बजे और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम युगल गीतों का हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात होंगे सुबह 8 बजे और 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर और 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गायक पार्श्व गायक मुकेश पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का, संपादन आकांक्षा सिंह का, प्रस्तुति मनीषा जैन। आज के फनकार कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और पुनः प्रसारण रात 9:30। रंग तरंग कार्यक्रम सुनिए दिन में 11 बजे और दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1 बजे श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर में। दोपहर समाचार सुनिए दिन में 2:15 पर और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3 बजे और दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तराने

पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक। इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 बजे होगा झरोखा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। संध्या रंजन का समय होगा शाम 6:35, 6:45 पर संगीत सरिता। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। हवा महल कार्यक्रम में सुनिए नाटक मेरे दत्तक पिताजी, लेखन सीवी जोशी का, हिंदी रूपांतर प्रभा भावे, निर्देशक मुख्तार अहमद। रात्रि 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे विविध भारती पर। समाचार संध्या में होंगे समाचार रात्रि 8:45 पर और 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, इस कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 10:30 पर और रात 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। ये थी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 6:30 बजे आप फिर से सुन सकेंगे शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए श्री रामचरित मानस का भाग 257।

विलाप करती सीता को रावण अपनी रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। मार्ग में एक स्थान पर गिरिशृंग पर बैठे वानर समूह को देख सीता ने अपना एक वस्त्र खंड गिरा दिया। उधर मारीच वध के स्थान पर अनुज लक्ष्मण को आया देख श्री राम ने चिंता प्रकट की। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण वहां क्यों चले आए? गोदावरी तट पर आश्रम सूना पाकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विलाप करते वन में भटकते दोनों भाइयों की तब जटायु से भेंट होती है, जो रावण से युद्ध में परास्त होकर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री राम के दर्शनों के लिए अब तक उनके प्राण टिके हुए हैं।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता में एक बार फिर रविंद्र जैन साहब का स्वागत है। मैं दादा आपको नमस्कार कहता हूँ।
2: मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको दोबारा बुलाने के लिए और सबको प्रणाम करता हूँ।
1: दादा, पिछली कड़ी में हमारे श्रोताओं ने आपके व्यक्तित्व की महानता पर एक नज़र डाली। आपके व्यक्तित्व के कितने आयाम हैं, कितनी दूर तक फैले हैं आप एक कलाकार के रूप में, गायक और संगीतकार और लेखक के रूप में। आज हम बात करते हैं आपके संगीत में जो फोक संगीत का समावेश हुआ है, लोक संगीत जो है, भारतीय लोक संगीत, विभिन्न प्रांतों का संगीत, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने फिल्मी गीतों में प्रांत प्रांत के संगीत को डालकर फिल्मी गीत को दूर दराज तक कैसे पहुंचाया और क्या विधा थी वो।
2: ये जो लोक संगीत की हम बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि ख़ास तौर से हिंदुस्तान की बात में कर रहा हूँ कि जब हमारा जीवन शुरू होता है उससे पहले से उसकी जो धुनें हैं आपको गर्व से ही आपकी कानों में डाल दी जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी तो है ही बहुत सारी धुनें, जब अलग अलग सोहर और चीज़ें आप सुनते हैं, उससे पहले के संस्कारों में भी आपको सुनने को मिलता है जिसको आप बाद में भी सुनते हैं। और शास्त्रीय संगीत जो कि सीखने से ताल्लुक़ रखता है।

0: होता है, लेकिन लोक संगीत जो है वो आपको विरासत में मिलता है। और मैं चूंकि अलीगढ़ से मेरा संबंध रहा, अलीगढ़ में पैदा हुआ हूँ, तो वो ब्रिज भाषा का भी वहाँ उतना ही प्रभाव है उस क्षेत्र में। ब्रिज भाषा ही बोलते हैं लोग और उर्दू बोली जाती है, हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि कहाँ से हम लोगों ने किस किस तरह मैंने उन वहाँ की धुनों को इस्तेमाल किया है
1: अपने गीतों में
0: जी अपने गीतों
1: जी
0: में।
1: जी
0: तो सबसे पहले मैंने ये ब्रिज का जो फोक इस्तेमाल किया, मैं अपने परिचय में एक पहले छोटा सा मुखड़ा आपको सुनाता हूँ, वहाँ की
1: जी
0: फोक पर सुना रहा हूँ
1: जी
0: आपको।
1: जी

0: ये हमारी लोग धुने ब्रज की
1: जी
0: और बोली भी वही है
1: जी
0: और मेरी आपने शैली भी इसमें समझ दी होगी कि मैं किस तरह उसका इस्तेमाल करता हूँ।
1: बहुत ही सुंदर।
0: तो ये इसी तरह हमारे यहाँ मल्हारे हैं, देखिए पीलू में ही है ज्यादातर चीजें सब, ब्रज का जो फोक है ना, पीलू और काफी इसी में ज्यादातर बातें हैं।

0: ये गीत मैंने मेरे मित्र शिव कुमार की फिल्म में ब्रिजभूमि में रिकॉर्ड किया था।
1: अच्छा
0: इसके
1: अपने,
0: बाद जो
1: हाँ
0: मुझे जो बड़ी फिल्म मैंने जिसके लिए मुझे जाना जाता है
1: जी,
0: वो थी सौदागर राशि
1: हाँ
0: वालों
1: जी
0: की,
1: जी जी
0: राजबाबू राशि प्रोडक्शन का। उस वक्त प्रोडक्शन का काम सारा उनके जिम्मे था, निर्माण वहाँ का। तो वो मेरे बड़े मित्र हैं और वो सबसे पहले मुझे गीतकार मानते हैं, या आज तक उनका मानना यही है, क्योंकि उनको मैंने जो गीत सुनाए थे उनसे प्रभावित रहे वो आज तक, और उसी प्रभाव में अभी तक गीतकार ही पहले कहते हैं, संगीतकार उनके बाद में लिखते हैं मेरे नाम के आगे। तो वो फिल्म सौदागर थी, जो एक शॉर्ट स्टोरी थी नरेंद्र नाथ जी मित्र की, रस बंगला परिप्रेक्ष्य था कहानी का,
1: जी
0: खजूर का गुड़ बनाने वाले की कहानी थी। तो कहानी में एज सच कोई सिचुएशन गाने कानों की नहीं थी, तो हमने बैठ के सारी सिचुएशंस वर्कआउट की और उन्हीं के ऑफिस में 7 दिन में सारा म्यूजिक कंप्लीट किया। एक गाना रोज उनके लिए मैं सिचुएशन बनाता था और लिखता था और वहीं कंपोज करता था। राजबाबू को मैं जब पहली बार मिला तो मैं कलकत्ते की कुछ चीज़ें वहाँ से बना के लाया था, जिनमें से एक गाना वो गोपाल कृष्ण ने रिकॉर्ड किया पहला गाना, हमारे कीर्तनंग का गाना है बंगाल का।
1: जी

0: वाह वाह
1: टिपिकल
0: वाह,
1: बंगाल है
0: हाँ
1: ये।
0: टिपिकल बंगाल में।
1: और भटियाली जो वहाँ का बहुत माझी
0: माझी गीत
1: नाव
0: है
1: खेने वालों का गीत है,
0: जी।
1: वो मन्नता ने बहुत अच्छा बड़ा सुंदर गाया है। और मैं अभी भी उस गीत का जो भाव है उसको मानता हूँ कि अभी तक मेरा भी किनारा बहुत दूर है, क्योंकि संगीत,
0: अनंत
1: इस
0: है
1: प्रोग्राम का नाम तो संगीत सरिता है लेकिन संगीत सचमुच एक सागर है।

0: इस गीत में मैंने सिर्फ बोल सजाए हैं, धुन पारंपरिक है और जैसा कि इसका भाव अर्थ है, मैं भी यही मानता हूँ कि अब एक आध कदम का हिसाब क्या रखूँ, अब एक आध कदम का हिसाब क्या रखूँ, अभी तलक तो वही फासला लगे है मुझे, यानी दूर है किनारा।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, जब भी एहसासों को आवाज देने की बात होती है, मुकेश का नाम अपने आप जुबां पर आ जाता है। आइए आज सुनते हैं उनकी वही अमर धुने जो हर दौर में दिलों को छूती रही। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम इस महान गायक कलाकार को स्नेहपूर्वक याद करते हुए सुनते हैं उनके कुछ भूले बिसरे गीत।

फूल बने अंगारे, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। गायक कलाकार थे मुकेश, आनंद बख्शी की रचना और कल्याण जी आनंद जी की धुन। मुकेश के गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे हर गीत को पूरी सादगी और सच्चाई से निभाते थे। शायद यही वजह है कि उनकी आवाज आज भी सीधे दिल तक पहुंचती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आवाज एक बार फिर मुकेश की, फिल्म का नाम मधुमति, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी की धुन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और इस समय वक्त है एक अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं मल्हार। इस फिल्म का गीत आवाज मुकेश की, कैफ इरफानी ने इसके बोल लिखे हैं और रोशन का संगीत।

दर्द हो, प्रेम हो या जीवन की कोई गहरी भावना, मुकेश ने हर एहसास को अपनी आवाज में इस तरह पिरोया कि उनके गीत समय की सीमाएं पार कर गए। आइए अब सुनते हैं आवारा फिल्म का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुकेश और उनके साथ ही किसी जोड़ी यानी कि किसी गायिका या गायक कलाकार के गीत। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उमर कैद। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है, सोनिक ओमी का संगीत।

मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गीत अभाषा भोसले और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी की शब्द रचना और सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

साथियों, राज कपूर और मुकेश की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है। ऐसा लगता था मानो पर्दे पर राज कपूर बोल रहे हो और आवाज मुकेश की हो, और ये आवाज इतनी मेल खाती थी कि जैसे लगता था कि राज कपूर साहब खुद ही गाना गा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं टावर हाउस फिल्म का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में, असद भोपाली की रचना, रवि का संगीत।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रीमान सत्यवादी। इस फिल्म का गीत मुकेश, सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, गुलजार दीनवी के बोल हैं, दत्तराम का संगीत।

एक बात कहूँ बल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, एक बात कहूँ बल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया दिल थाम लिया।

0: से परखते हैं दिल, इस दिल से परखते हैं दिल, सच कहने के आदि है, हम तो सत्यवादी है।
1: जब इससे नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही।
0: एक बात कहूँ वल्ला, ये हुस्न सुभान अल्लाह।

हमारी याद आएगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। केदार शर्मा ने इसे लिखा था स्नेहल भाटकर का संगीत। आइए अब आपको सुनाते हैं ससुराल फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

और आज के भूले बिसर गीत इस क्षमा कीजिए, आज का हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना है, राजेश रोशन का संगीत, फिल्म का नाम तुम्हारी कसम।

आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मुकेश के गीत आज हमने आपको सुनवाए, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम और हम है राही प्यार के इन दोनों कार्यक्रमों में। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। आज सुबह 9:30 पर आप आज के फनकार कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, जिसमें जो केंद्रित होगा मुकेश पर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सुनिए थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभाश्री की रिपोर्ट के

0: सात समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।

0: दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के

स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 22 जुलाई है, कैलेंडर के पन्ने पर एक आम सी तारीख, लेकिन इतिहास के झरोखों में झांके तो हमारे देश के लिए ये बहुत गौरवशाली और महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 में भारत की संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। इसमें तीन रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से अशोक चक्र बना था, जिसमें 24 तीलियां थीं जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती थीं। राष्ट्रध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज भी मौजूद है और ये तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है।

इतिहास के गलियारों में भटकें तो पता चलता है कि सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश 1921 में महात्मा गांधी ने की थी, जिसमें बापू ने दो रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात कही थी। इस झंडे को मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। दो रंगों में लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में था गांधी जी का चरखा, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते चले गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को डिजाइन किया था। 1923 में पहली बार इस तिरंगे का प्रयोग हुआ था नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में। इस दौरान हजारों लोगों ने इस ध्वज को अपने हाथों में थामा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में इस ध्वज का इस्तेमाल किया था। आज हम अपने घरों और दफ्तरों में तिरंगा फहरा सकते हैं, इस बात की अनुमति है। तिरंगा भारत के गौरव का प्रतीक है और हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं।

साल 2002 से इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए हैं। अब कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर में सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज फहरा सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया।

इस उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और लोगों ने घर घर में तिरंगा फहराया और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजाद हैं। जब किसी खेल में भारत के खिलाड़ी जीतते हैं तो वो तिरंगा उड़ते हैं या पूरे मैदान में तिरंगा लहराते हुए दौड़ते हैं। ये भारत के गर्व को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें जिससे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाए और हम तिरंगा लहरा सकें।

ध्वज दिवस यानी फ्लैग डे पर केंद्रित थी आज की त्रिवेणी। हर साल 22 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ, जो है फिल्म योद्धा से। इस गीत को गाया है बी प्राक ने। मनोज मुंतशिर की रचना है, तनिष्क बागची का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं दिलवाले इस फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

क्षेत्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का। ये गीत जो अभी आपने सुना, ये था उड़ता पंजाब फिल्म से शाहिद माल्या की आवाज। श्री शिव कुमार बटालवी ने इसे लिखा था और अमित त्रिवेदी का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। तनिष्क बागची और आनंद बख्शी ने इस गीत की रचना की है और धुन बनाई है तनिष्क बागची और बीजू शाह ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं जवान फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में, कुमार की रचना अनिरुद्ध, रविचंद्र का संगीत।

0: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत दीपमणि और नेहा भसीन की आवाजों में, रेस 3 फिल्म से है ये गीत, कुमार की रचना, मीत ब्रोस का संगीत।

ये गीत अभी आपने सुना नेहा भसीन की आवाज में, और अब चित्रों कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोज की आवाजों में, कुमार की रचना, मीत ब्रोज का संगीत।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए अख्तर चन्नाल की आवाज में। फिल्म का नाम फैंटम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सही परांजपे की, उजाली।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत। अश किंग की आवाज साथ दिया है शशा तिरुपति ने। इस गीत को लिखा है अराफात महमूद और तनिष्क बागची ने, संगीत तनिष्क बागची का।

एआर रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाजों में अभी आपने सुना ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल थे और संगीत था एआर रहमान का। इस गीत के साथ ही आज के इस चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।
1: जब

0: रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

अपने। मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे, और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल विश्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल विश्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से

ढूंढते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे, एक गाना था ये।

और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

0: था।
1: चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों आए हैं। दरअसल यहाँ हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुना।

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सबकी आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा चैन।
1: आज के फनकार।

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया।
1: जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई।
0: कभी थपकी दी और बहलाया।

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली

0: गए थे,
1: जी
0: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
1: उद्घोषक बनने
0: उस,
1: का।
0: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
1: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था, जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने
0: हाँ,
1: रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू करते हैं।
0: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रॉन्ग है या राइट, राइट राइट राइट,
1: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
0: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
1: जी,
0: एक गली में, दिल्ली में घूमते घूमते, यार ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे
1: जी
0: रेडियो पर,
1: जी
0: वो उस दिन पूरा हुआ।
1: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
0: यस, और एक और कनेक्शन है
1: अच्छा
0: कि उनकी जो जीवनी है
1: जी
0: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया,
1: जी
0: वो भी
1: ये मेरा
0: कनेक्शन बन गया,
1: सौभाग्य है।
0: तीसरा
1: बिल्कुल
0: कनेक्शन बन गया।
1: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहां लोग क्या क्या काम किया करते थे?
0: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ, भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया।
1: जी
0: तो 1947 में वो इंडिया आए,
1: सरहद के इस पार आ गए।
0: हाँ, तो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई,
1: जी
0: मेरे देश में,
1: बिल्कुल।
0: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
1: क्या प्यारी बात
0: अगर
1: है।
0: मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
1: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
0: हाँ,
1: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
0: पवन चले पुरवाई,
1: हाँ,
0: क्योंकि जी सिंह के हमारे खुले गांव में,
1: हाँ,
0: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन,
1: बिल्कुल,
0: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत करते।

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबड़ में उस बॉटल के अंदर।
1: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी, उसका
1: पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी। कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो संग्रहित
1: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी मेंशन की हुई है। हाँ।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटिए। जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीजें।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: और ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी।
1: हाँ, वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
0: खराब माना जाता।
1: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
0: अरे गजब।
1: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में। तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने भी नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
0: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त,
1: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको
0: जी जी।
1: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे, और उस पर एक्टिंग भी करते थे।
0: वाह वाह।
1: क्योंकि जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
0: जी,
1: तो उनको भी पकड़ा जाता था, डायलॉग मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर को बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
0: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
1: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है,
0: समुद्र के पार है।
1: समुद्र के पार है, तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
0: हाँ।
1: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
0: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
1: तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर मार्शल क्लैन।
0: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
1: कैडेट, यू वर नेवल कैडेट, और उनकी भर्ती हुई दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
0: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
1: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
0: ये जो बगावत थी,
1: बगावत

0: बहुत मशहूर है,
1: बहुत मशहूर
0: है, इसका
1: बहुत।
0: इतिहास में दर्ज है।
1: पहली बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पे राज नहीं कर सकेंगे
0: जी,
1: क्योंकि देखिए आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके कू बन जाता है, लेकिन भी कू
0: बिल्कुल,
1: तो दैट इज वेन रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा
0: जी।
1: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था, और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे, उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।
0: अरे
1: तो उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था
0: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी,
1: बहुत कम थी
0: जी।
1: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सबसे पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो मैंने चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं
0: जी।
1: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैड टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की सिग्नल्स।
0: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
1: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है और एक जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है
0: जी।
1: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट
0: जी,
1: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकेंड लाइफ दी कि तू जा
0: जी,
1: देखो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
0: और छोड़ दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात,
1: रेस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
0: अब जब घर आए तो क्या हाल हुआ?
1: घर आए तो फिर नेचुरली फिर तो इमीडिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी, तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
0: और बाकी दोस्तों
1: का कुछ था उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
0: अरे बाप रे,
1: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बोतल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया, और उस जिससे पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी, और हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में जो भी 5, 10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के अपने 2-3 एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के पानी वानी पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त।
0: अरे अरे अरे,
1: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस, तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारे किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
0: फिर
1: स्कूल जाने के लिए सब जबरदस्त पिटाई हुई।
0: अरे अरे,
1: तो उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहाँ से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया गांव में,
0: यहाँ गलत संगत,
1: गलत संगत होगी इसकी। हाँ। इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा मुस्ताफा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना, ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्होंने वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे, कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटीवीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है, अपना हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतना बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति दूध का
0: शौक, मलाई, गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा, यार इतना तो खूब पिटाई हो रही है, लेकिन यार धूप भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी ना किसी के पीछे छुप जाते थे,
1: ताकि रिंग में ना आना
0: पड़े। वो रिंग में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए। लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला, यार तुम कौन हो, हैव यू ज्वाइन न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए,
1: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा।
0: ये उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने।
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे, सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए, कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया। तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है। और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो,
1: हाँ,
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज। उस हिसाब से तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन गहने वहने, हाँ, खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए, देवर 2-3 फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए रावलपिंडी। पता नहीं बीच पे रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डू नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे,
1: क्योंकि
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी, जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाऊजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ, क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में, रातों रात वहां से जब निकले, अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए
0: वो
1: बहुत
0: तस्वीर ही
1: मायने
0: उनकी
1: रखती थी।
0: मेमोरी थी कि ये, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ, इन्हों जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, वो हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो, तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात
0: तो
1: बोली।
0: मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
1: वाह,
0: प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं
1: क्या
0: लिख सकता
1: बात
0: ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़की का लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना,
1: यस बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी मम्मी को बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपनी मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात है।
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से, वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा, और उनके जाने के बाद जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस
1: कि
0: मिली।
1: उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले,
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे।
1: वो उनकी जिंदगी की कहानी।

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जो रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में, तो उनका जो लिखाई है वो भले हिंदी है

0: हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी,
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
1: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
0: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8 स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो वो फिर वापस आ गए थे।
1: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
0: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पूना शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप
1: सरकार ने भेजा।
0: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया, दे वॉन्टेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही हैं, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में, तो पूना से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया। फिर उनको घर दिया गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला एक जगह है, सराय रोहिला। तो फिर पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइन इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन
1: जी
0: एंड
1: जी
0: टेलीफोन ऑपरेटर।
1: ओके
0: तो उनका जो कोड नेम था एज ए सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
1: जी जी
0: और टाइप राइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम, सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ एनिमी इज रिकॉर्डिंग आवर
1: तो वो नहीं
0: कम्युनिकेशन,
1: जान
0: उनको
1: पाए
0: पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
1: बंदा कौन है, उसकी
0: बंदा,
1: लोकेशन क्या
0: हाँ,
1: है।
0: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था,
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
0: वाकई में आजाद थे वो,
1: क्या बात
0: आजाद
1: है।
0: दिल
1: अच्छा,
0: के।
1: उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले,
0: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी इनकी,
1: हाँ
0: ही
1: नहीं,
0: ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
1: ट्रेनिंग वहां हुई।
0: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई, तो उनका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो आपका
1: हाँ
0: गांव है।
1: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जब्बलपौर। आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो
0: हाँ,
1: अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे
0: हाँ
1: नोट्स लिखे हैं
0: हाँ
1: साइंस के, तो वो देख के ऐसा
0: लेकिन
1: लगता है कि
0: कमाल
1: वो
0: की
1: एक
0: बात है, ही वॉज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
1: तो वो
0: मतलब
1: टच
0: वो
1: नहीं करते थे।
0: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वॉज लाइक दैट
1: नहीं, लेकिन वो जो
0: उनको।
1: नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें
0: हाँ,
1: तो क्या
0: सब
1: सर्किट,
0: कुछ, लेकिन
1: बहुत
0: एक
1: सुंदर
0: होता
1: राइटिंग में
0: ना
1: सब
0: कि
1: कुछ
0: एक
1: है।
0: फोबिया होता है, शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चुपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
1: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
0: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना, बोलता अरे जाना है खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है, या गिट्टी गिट्टी खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं, मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना, तो हम लड़ते थे डैडी के साथ। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली, तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं, या माय ब्रदर, या माय सिस्टर, और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो, दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
1: तो एक अकेलापन आ जाता।
0: अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट,
1: जी जी जी
0: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू,
1: यस,
0: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडेंट यू आर हर्टिंग योर सेल्फ,
1: कि मेरा तो कोई नहीं है।
0: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
1: हाँ,
0: मेरी
1: मुझे
0: माँ ने
1: छोड़
0: मुझे
1: दिया।
0: छोड़ दिया, तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो को लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई, मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनी बडी रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की,
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज्ड दैट शी डाइड, बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी लेडीज की, बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था, 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराशूटिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, इसे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डर बाद में आया, कब आया? जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल,
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरे पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो।
1: अरे गजब,
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंट्रा स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं दो तीन जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शी साहब को देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते,
0: हाँ, क्यों जाते थे? हाँ। तो कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक,
0: तो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी,
1: बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट इज, मैंने ज्वाइन द आर्मी इट वॉज पेट्रियोटिज्म, मैंने ज्वाइन द नेवी इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे? उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर and he performs very good stage shows and I so-and-so commander officer captain recommend him to anybody in the film industry to please give him a work as a songwriter.
1: गजब, यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: सिनेमा में काम दो।
1: वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी है, हमारे पास रेडीनेस को संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत,
1: इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। ये वाज द मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज,
1: और ये
0: एनुअल
1: इम्पोर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था। 29 टाइम्स क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था,
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रिकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहले ही बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे, मुंबई आए, साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स मुंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: मुंबई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में मुंबई आए,
0: तीन महीने
1: में वापस चले गए, और वापस आर्मी में
0: हार के। और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो देव वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना, वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमीडिएटली। फिर उनकी शादी हो गई, तो
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है? वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का। बोला यार तू इधर क्या कर रहा है? तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ। तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है। तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज, वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था, नंद।
1: हाँ, आनंद से नंद,
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस, ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई, बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत,
0: बहुत बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई, ये तो
1: वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं, कुछ देखने वाला क्या, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देखने गए?
1: सीधे शादी तय,
0: शादी तय। और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए, ये कमाल की बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है सुनिधि सी, इस एल्बम का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, गीत और संगीत ललित का।

मिताली सिंह की आवाज में ये गजल आइए सुनते हैं। शब्दकार इब्राहिम अश्क, संगीत भूपिंदर सिंह का, और एल्बम कुछ इंतजार है।

0: कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: ये है हरिहरन की आवाज, शब्दकार ताहिर फराज, संगीत हरिहरन का एल्बम जश्न।

दलेर मेहंदी की आवाज में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। दलेर मेहंदी का ये संगीत है और गीत है दलेर मेहंदी और संजीव आनंद का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब मधुश्री की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत एल्बम मोक्ष।

अगली जो आवाजें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं, बोल निदा फाजली के, जगजीत सिंह का संगीत और एल्बम किसका चेहरा।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं पामेला जैन की आवाज में मनोज दर्पण का लिखा हुआ ये गाना, बबली का संगीत, एल्बम मेरा घूंघटा।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए, बहुत अच्छा।

0: लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
0: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
0: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
0: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबेल मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
0: जी जी जी श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी आप जानते हैं कि कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
0: जी
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
0: अजीत जी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी
0: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
0: जी यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
0: जी
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
0: जी
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
0: जी
1: विमलेश जी एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
0: जी
1: ये मोरुंग होता क्या है?
0: अजीत जी मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
0: जी यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है
0: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ceiet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता

0: का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
1: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
0: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
2: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
1: जी मालिक, ये बात तो है।
2: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
1: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
2: अच्छा,
1: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
2: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
1: जी मैं।
0: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूँगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
2: यह नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,

बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी

0: मेरी प्यारी सुंदरिया। वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर तीर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
0: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
0: हीरा सिंह ने गाय को फुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
3: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
3: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
5: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
5: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
5: मेघालय की राजधानी है शिलांग,

0: ये कहानी शिलोंग की है।
1: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
2: यही कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ वो रही।
1: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
0: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
1: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
0: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
0: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे पिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना। तो
2: नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात, वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूँ तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलियन, शेल्विन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी, बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
0: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कू कू करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
1: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्विन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: है? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
2: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
2: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
2: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
2: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
2: नहीं।
3: लेकिन सोचो कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
2: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
2: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
2: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा अच्छा समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
2: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है, मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
2: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
2: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए,
3: अब
2: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने

0: इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
1: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुला मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो,
1: आ जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर।

आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना राज फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

नमस्कार श्रोताओं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है, विविध भारती के फेसबुक पेज पे हमने पोस्ट की है, जो आप लोगों ने पढ़ी है, उस इबारत को हम यहाँ पढ़ के आपको सुनाते हैं। इंसान अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करता है, कभी सफलता, कभी संघर्ष, कभी असफलता। अंतिम परिणाम तो बाद में आता है, पर इंसान की पहचान उसके धैर्य और साहस से होती है। हर ठोकर के बाद भी चलते रहना और व्यक्तित्व को गढ़ना

ना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब कोई हृदय तोड़ दे, जब कोई चांदी की दीवार छोड़ दे, जब दोस्त दोस्त ना रह जाए, जब बहारें भी चमन लूट लें, जब वक्त भी वफा करना छोड़ दे, जब समझ में ना आए कहाँ जाए, तब एक जादुई रूहानी आवाज हमारा दामन थाम लेती है। उस आवाज का दामन थामे हम अपने एहसासों को बड़ी शिद्दत से बयां करते हैं और कहते हैं, भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, क्योंकि हमें ये पता है दुनिया बड़ी है संग दिल। बताइए कौन सी है वो आवाज जिसने हमें जिंदगी के मायने समझाए और मुश्किल समय में हमें आवाज दी। जी हाँ, आपको अपने बारे में भी बताना है कि आपके लिए वो कौन सी आवाज है। एक हमारे साथी ने बहुत प्यारी बात लिखी है, लिखते हैं कि मुकेश जी की आवाज दर्द की वो स्याही थी जो कागज पर नहीं सीधे दिल पर उतर जाती थी। वो न ऊंचे सुरों के जादूगर थे न शब्दों के बाजीगर, वो बस सच गाते थे। उनकी आवाज में वो थकान थी जो हर टूटे हुए इंसान के भीतर होती है, वो सन्नाटा था जो बिछड़ने के बाद कमरे में रह जाता है। उनके गाए दर्द भरे गीतों को सुनते हुए लगता है जैसे कोई अपना बहुत पास बैठकर बिना शिकायत किए बस अपनी कहानी सुना रहा हो। मुकेश जी ने दर्द भरे गीतों में खुद को जिया है, इसीलिए दशकों बाद भी जब रात भारी हो जाती है, जब आंखें भिगो देती है, जब सबसे पहले उनकी आवाज कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना। जी हाँ, यही आपको बताना है कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, कई बार परिस्थितियां बहुत नकारात्मक होती है, हम परेशान होते हैं, लेकिन एक आवाज़ होती है या एक व्यक्ति होता है जिसकी आवाज़ सुन के, जिसकी बातें सुन के, या फिर जिसका हमारे सिर पर हाथ रख देना ही काफ़ी होता है और वो ये कहता है कि मैं हूं ना, आप धैर्य रखिए, और उनकी आवाज़ सुनकर मन को बड़ा संबल मिलता है। आप बताइए कि आपके जीवन में वो कौन सी आवाज़ है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा शख्स है जिनके वो प्यारे शब्द सुन के, जिनके मन को बहुत सांत्वना देने वाले जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं और आपके मन को बहुत संबल मिलता है। चलिए पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गाना सुनते हैं, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये भी आपको बताना है।

क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि जब मुश्किल हालात हो तब मेरे पास आना और मेरे पास वो सुकून मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो? ऐसी ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई आवाज आपके पास है तो उसे हमें बताइए। मनोज कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी की ये बात है कि निराशा के इन घने बादलों के बीच जब जिंदगी से भरोसा उठने लगता है तब रेडियो के किसी कोने से एक बेहद दर्द भरी रूहानी और मखमली आवाज गूंजती है। वो आवाज हमारे टूटते हौसले को संभालती है और गुजरे जमाने की भूली हुई यादों को ताजा कर देती है। भले ही ये दुनिया बड़ी है संगदिल, लेकिन उस आवाज का जादू हर गम को सहने की ताकत देता है। वो दर्द के बादशाह और जज्बातों के जादूगर कोई और नहीं, हमारे अजीज मुकेश जी हैं, जिनकी आवाज ने हर तन्हा दिल को जीने का सहारा दिया है। एक साथी ने ये बात लिखी कि आज की इबारत के कण कण में मुकेश जी समाये हुए नजर आ रहे हैं। दर्द भरे करुण रस से परिपूर्ण गीतों के साथ मुकेश जी के कुछ और भी गीत हमें सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, गीत कई सारे हैं। और इसके पहले जो कार्यक्रम था यादों की महफिल, उस कार्यक्रम में हमने आपको लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत सुनवाए, बहुत सारे जिनमें बहुत हंसते खेलते गीत थे। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत हैं जो हमारे दर्द से जुड़े हुए हैं या हमारे दिल के या हमारे समय के बहुत मुश्किल हालातों से जुड़े हुए जो गीत हैं वो आपको सुनाई देंगे। चलिए अगला गाना, विश्वास फिल्म का गाना, मुकेश जी की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, जितेंद्र और अपर्णा सेन पर फिल्माया गया।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि बचपन में माता पिता, बाद में वाइफ और सूरत में जब 2006 में पूर आया था, यानी कि बाढ़ जब आई थी, तब मेरे अंकल यानी कि मेरे जो काका हैं, उन्होंने मुझे कहा था मैं हूं ना। एक साथी की ये बात है कि आज जो इबारत है इंसान के भीतर छिपे उस असीम धैर्य और जज्बे को सलाम करती है जो सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखता है। ये रूहानी और जादुई आवाज सदी के महान गायक मुकेश जी की है, जिनके गाए गीत जाऊं कहां बताए दिल की गूंज इस इबारत के हर लफ्ज को महसूस होती है। जब रिश्तों के धागे टूट जाते हैं और अपने ही पराये होने लगते हैं, तब मुकेश जी की आवाज किसी ठंडी छांव की तरह हमारा हाथ थाम लेती है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि केवल सुर नहीं लगाते थे, बल्कि इंसान के एकाकीपन और इसके उसके भीतर चल रहे संघर्ष को अपनी आवाज में जी लेते थे। उनका वो सादगी भरा, दर्द से भीगा अंदाज भरोसा दिलाता है कि बिखर जाना अंत नहीं है, ठोकरे खाकर फिर से खड़े होना जिंदगी का असली नाम है। बहुत अच्छी बात है आपकी, धन्यवाद आपका। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, देखिए कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन अपने आप को संभाले रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं? क्या कहते हैं आप अपने दिल को, अपने मन को किस तरह समझाते हैं? और ये भी हमने आपसे पूछा है कि कौन सी आवाजें हैं, कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपसे कहा है कि हाँ मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल हैं, दो सवाल हैं, बताइए इसके बारे में। चलिए अगला गाना संगम फिल्म से है, शंकर जयकिशन का संगीत है और इसमें तीन कलाकार हमें दिखाई देते हैं, तो राज कपूर तो है ही, उनके अलावा दो और कलाकार हैं, वो कौन कलाकार हैं ये आप हमें बताइए।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्म आया गया ये गाना है। एक साथी लिख रहे हमारे कि जब मैंने कक्षा 10वीं परीक्षा दी थी, लास्ट पेपर के दिन पापा का देहांत हो गया था। मेरे पापा निरंतर विविध भारती सुना करते थे और ऑल इंडिया रेडियो भी सुना करते थे। आज लगभग 30 वर्ष हो गए, मैं भी निरंतर रूप से विविध भारती सुनता हूँ और जब कभी परेशानी में होता हूँ तब विविध भारती में एक हिम्मत दिलाने वाला गाना बज जाता है और कहीं से ये सुनाई देता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे पास मुकेश जी के गाए गीतों की किताब हुआ करती थी जिसमें से हमने सारे गीत याद कर लिए थे, तो उनके तो सारे गीत ही हमारे फेवरेट हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, पैसे का महत्व धन की महिमा बखान करता है, ये गीत बता रहा है कि प्रेम में भी पैसे ने सेंध मारी की है, पैसे की खातिर लोग कैसे दिल तोड़ देते हैं और अलग दुनिया बसा लेते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी के गाने की बात है तो दिल की गहराइयों में समा जाता है वो जो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुकेश जी का व्यक्तित्व उनके गायन की तरह ही अत्यंत सरल, विनम्र और सहज था। वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे, उनके उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे सहकर्मियों, संगीतकारों और अपने प्रशंसकों के प्रति आत्मीय व्यवहार रखते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ही उनके व्यक्तित्व को और अधिक महान बनाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देवर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। संगीत किसका है आपको बताना है।

देवर फिल्म का ये गाना, इस गाने को संगीतबद्ध किया रोशन ने। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि जब हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, हमारी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। तब सहारा दिया हमारे कई अपनों ने, जिसमें सबसे ऊपर नाम हमारे पापा का है, उसके बाद बच्चे और कुछ प्यारे से दोस्त। सबसे ज्यादा सहारा मिला विविध भारती का, जिसके साथ हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बीता और गीत जो शुरू से शामिल थे हमारी जिंदगी में। एक हमारे जो साथी हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज का जादू बयां करते हुए कुछ प्रशंसक पंक्तियां लिख रहा हूं। दर्द में डूबी वो आवाज जो रूह को छू जाए, मुकेश के गीतों में सारा जहां समा जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए कि धुन हर दिल को सुकून और गहराई दे जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल ने पुकारा, इस फिल्म का गाना, इन देवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मैं कभी मुकेश जी के गाने पहले सुनता नहीं था, लेकिन जब गाने सुने तो पता चला कि इन लोगों को या इन गानों को लेजेंड क्यों कहते हैं। इन लोगों के गाए गाने सीधे दिल की गहराई में उतरते हैं। और एक गाना जो हमने देवर फिल्म का सुनवाया था, बहारों ने मेरा चमन लूट के, तो एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि वाह क्या बोल है, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती का नाम क्यों दे दिया, अप्रतिम गाना है। और इसी गाने के बारे में हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि देवर फिल्म की ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, ये इंसानी रिश्तों की मजबूरी, किस्मत के क्रूर खेल और निस्वार्थ प्रेम के बदले मिले धोखे को दर्शाता है। ये गाना सिखाता है कि जब इंसान के पास अपनी बेबसी जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो संगीत का सहारा लेता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुकेश जी 1972 में हमारे शहर कटक में आए थे, बाराबाती स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, नितिन मुकेश छोटे थे वो भी आए थे, और गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं ये गाना उन्होंने गाया था, और ये बातें इन्हें याद आ रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज यानी सादगी, सच्चाई और दर्द का ऐसा संगम जो सीधे रूह को छू जाए। उन्हें विरह के गीतों का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता, बिना किसी शास्त्रीय तामझाम के भी उनकी गायकी सीधे दिल में उतर जाती है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं छोटी बहन फिल्म का गाना। मुकेश की आवाज है, हसल जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, कौन से कलाकार पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।

0: मेरी बस कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूल।

0: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: तुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल।
1: रहमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि मुकेश की गायकी कोई दिखावा या बनावटी पर नहीं था, उनके हर गीत में शब्दों का उच्चारण इतना साफ और संजीदा होता था कि हर शेर एक कविता की तरह कानों में रस घोलता था। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि इन गीतों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं, एकदम अंदर तक धसे हुए हैं दिल में ये सारे गाने। हम लोग के घर में लॉन्ग प्लेयर था रिकॉर्ड, मुकेश जी का हर तरह के गाने का कलेक्शन हुआ था होता था, बहुत अच्छे लगते हैं उनके ये गाने। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि राज कपूर के रूप में मुकेश को सिनेमा का बेहतरीन साथी मिला, आवारा हूँ या मेरा जूता है जापानी जैसे गीतों में उन्होंने आम आदमी, उसके संघर्ष और उसकी जिंदा दिली को अपनी गायकी से एक मुकम्मल अंदाज में बयां दिया। राज कपूर ने शायद इसीलिए कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किसने लिखा है ये गाना, ये आप हमें बताइए।

हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है। आपने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी की राह में कभी ठोकरें मिलती है, कभी बहारें, कभी दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, तो कभी वक्त वफा करना भूल जाता है। ऐसे में कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक पहुंचती है। वे हमारे दर्द को शब्द देती है, हमारी यादों को सहलाती है और अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाती है। ऐसी ही ये आवाजें। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर जी एक ऐसी आवाज का नाम है जो सीधे दिल में उतर जाती है। द वॉइस ऑफ द मिलेनियम और द मैन विद द गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले मुकेश जी की आवाज में जो दर्द, सादगी और एक अनूठी कसक थी, मुकेश जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत उनकी आवाज का ठहराव और उर्दू की बेहतरीन अदायगी थी। मुकेश जी अपने गीतों में जीवन के दर्शन, प्यार की तड़प और आशावादी दृष्टिकोण को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पिरोया था। चलिए, संजोग फिल्म का गाना, संगीत किसका है यह आपको बताना है। दो कलाकार हैं, प्रदीप कुमार और शोभा खोटे, उन पर फिल्माया गया ये गाना है।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो केवल एक गीत नहीं गाते थे बल्कि सुनने वाले के दिल का बोझ हल्का कर देते थे। जब वे गाते हैं चांदनी आई घर जलाने तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें भी उस वक्त इंसान को तकलीफ दे रही है। ये आवाज हर अकेले और उदास इंसान को ये तसल्ली देती है कि इस दर्द में वो अकेला नहीं है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको आपको मिल ना सके सुबह के उजालों में। कुछ आवाज ऐसी रूहानी होती है ढूंढने से नहीं मिलती, गानों के माध्यम से कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है वो आवाज मुकेश की। एक साथी हमारी लिख रही कि क्या आवाज थी वो, जब गम के साए घेरते तो चुपके से कहीं दूर रेडियो से झड़ती वो आवाज हमें अपने आगोश में ले लेती और हम कुछ देर के लिए गम भूल जाते और सब जब सुख के फूल बिखरते हैं तो ये आवाज हमें अपने साथ झूला झुलाती। न जाने कितनी उपमाओं से सजी थी मुकेश जी की आवाज, जितना लिखूं कम है। आकाश में जितने तारे हैं नदी में जितना पानी है वैसे ही गायकी की दुनिया में मुकेश की उपस्थिति दर्ज है। सदियां बीत जाएंगी मगर मुकेश जी की आवाज का जादू कम न होगा। चलिए अनीता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात है कि आज की इबारत मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन, संघर्ष और संगीत के रूहानी असर का एक अत्यंत भावुक और जीवंत चित्रण है। ये सच है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर ठोकर के बाद संभलना ही जीवन है। जब इंसान तन्हाई, छल और वक्त की बेवफाई से टूट जाता है, तब शब्द और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। उस वक्त केवल संगीत और एक रूहानी आवाज ही दिल को तसल्ली दे पाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बंदिनी फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, नूतन पर फिल्माया गया। संगीत किसका है आपको बताना है।

दिल को सीधे लगती है मुकेश जी की आवाज़, बिल्कुल सीधी सादी सादगी सच्चाई भरी आवाज़। कौन भला न होगा जो मुकेश जी की आवाज़ पर मोहित ना हो। एक साथी लिख रहे हैं कि हर इंसान की असली पहचान उसके जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौती भरे समय उसके जीवन का हिस्सा होती है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। विपरीत परिस्थितियों में भी असली पहचान व्यक्ति के धैर्य और संयम से होती है, इसमें सफलता मिले या असफलता उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है, समय कम है, चलिए एक गाना आपको सुनवाते हैं। बंबई का बाबू इस फिल्म का ये गाना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन है यह आपको बताना है।

अब हमें भी चलना होगा, समय जो है हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है कि कुछ और बातें की जाए या और गाने सुनवाए जाए। ये जो गाना आपने सुना, इस फिल्म के मुख्य कलाकार देव आनंद और सुचित्रा सेन हैं, और आपने बहुत प्यारी बातें फेसबुक पर लिख करके भेजी, इसके लिए धन्यवाद। और अब मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 22 जुलाई है। कैलेंडर के पन्ने पर एक आम सी तारीख, लेकिन इतिहास के झरोखों में जाके तो हमारे देश के लिए ये बहुत गौरवशाली और महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 में भारत की संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। इसमें तीन रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से अशोक चक्र बना था, जिसमें 24 तीलियां थीं जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती थीं। राष्ट्रध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज भी मौजूद है और ये तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है।

इतिहास के गलियारों में भटकें तो पता चलता है कि सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश 1921 में महात्मा गांधी ने की थी, जिसमें बापू ने दो रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात कही थी। इस झंडे को मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। दो रंगों में लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में था गांधी जी का चरखा, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते चले गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को डिजाइन किया था। 1923 में पहली बार इस तिरंगे का प्रयोग हुआ था नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में। इस दौरान हजारों लोगों ने इस ध्वज को अपने हाथों में थामा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में इस ध्वज का इस्तेमाल किया था। आज हम अपने घरों और दफ्तरों में तिरंगा फहरा सकते हैं, इस बात की अनुमति है। तिरंगा भारत के गौरव का प्रतीक है और हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं।

साल 2002 से इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए हैं। अब कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर में सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज फहरा सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और लोगों ने घर घर में तिरंगा फहराया और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजाद हैं। जब किसी खेल में भारत के खिलाड़ी जीतते हैं तो वो तिरंगा उड़ते हैं या पूरे मैदान में तिरंगा लहराते हुए दौड़ते हैं। ये भारत के गर्व को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें जिससे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाए और हम तिरंगा लहरा सकें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं।

0: सकते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
2: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को जो उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
3: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
4: In this era of volatility and disruption,
5: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
1: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
6: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पहला जो गीत है ये उसने कहा था, इस फिल्म का गाना है। मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

तू नहीं और सही इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में, गीतकार असद भोपाली, संगीतकार रवि।

0: प्यार से।
1: परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीबी राजी, इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

तीर और तलवार इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं, आशा भोसले की आवाज, फारूक कैसर के बोल, संगीत निसार का।

अगला गीत सुनते हैं, रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल, संगीत शिवराम का।

रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बिल्कुल बढ़िया।
2: बिल्कुल मानसून में
1: बारिश का आनंद ले रही हो, है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखिए कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खानपान से संबंधित सावधानियां तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मानसून चलेगा।
2: बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मानसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
1: आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती
2: जी।
1: तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से लेते हैं। महिलाएं और फिटनेस
2: जी,
1: ये हमारा पहला विषय है
2: जी।
1: और दूसरा
2: है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर।
1: हाँ।
2: और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए।
1: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है।
2: जी हाँ बिल्कुल।
1: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए, मितव्ययता से रहना चाहिए, सोच समझ कर कहां जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है,
2: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना,
1: हाँ।
2: तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है, हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है या फिर आप

0: अपनी अच्छी तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं।
1: हाँ, तो ये आप हमें बता सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए, आज फिटनेस की बहुत सारी बातें हो रही है, तो ज्वार के व्यंजन, अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह, एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, तो आप जहां पर रहते हैं आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं, तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं।
1: हाँ, रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं हमारी दादी नानी के जमाने से कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें सब्जियां उसके साथ खाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और
0: गीत, वो है संगीत।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: आरती, देखो पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें, और
1: जी
0: इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान
1: जी
0: रखें,
1: बिल्कुल
0: और खास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो।

0: मॉनसून का सीजन हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी
1: जी
0: इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो
0: चलो,
1: फिटनेस के ऊपर हमारे कुछ बताने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक लेखिका हैं, ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका हैं, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं,
1: जी
0: तो सुनते हैं उनकी ये बातें और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल,
0: चलो
1: और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करिए, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं। आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
0: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत
2: बिल्कुल
0: सारा धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही है
0: जी
2: लगातार,
0: जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
0: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो
2: सखा भी
0: समय सखा भी सुनते
2: सुनते
0: हैं,
2: हैं।
0: तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ
2: जी,
0: आकर।
2: हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए, सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है,
2: बिल्कुल।
0: और ये चीज बिल्कुल गलत है। ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा?
2: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
0: नहीं, अमूमन नहीं होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये, कि तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
2: जी।
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहां तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी,
2: जी।
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ
2: बैडमिंटन खिलाड़ी।
0: और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है।
2: जी।
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की, तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं, सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूं। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। जी ये मैंने जिम शुरू किया।

0: 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
1: बिल्कुल
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ, चना चवला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें, तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार, तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहां हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहां, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए, है
1: जी जी
0: ना, फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजुरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी, लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूं आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है,
0: होती है
1: क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की
1: कल
0: होती है,
1: हाँ
0: गर्दन की
1: गर्दन की
0: होती
1: हाथ
0: है।
1: की।
0: तो मैं भी जब लिखती हूं, मैं अभी भी कागज कलम पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज और कलम ही चाहिए, तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जमाना बदला है ना, इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
1: जी
0: एक जमाना था जब मैंने ये चीजें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूं, और जमाना बदला है तो, और अब चीजें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नजरिया है वो सकारात्मक रखें तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ एक चीज और कहूंगी कि
1: हाँ
0: हक तो है ही, देखिए जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहां

0: कर्तव्य भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
1: जी
0: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
1: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
0: मैं ना खूब मस्तीखोर हूँ, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता
1: जी जी
0: है। मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहाँ म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं।
1: थिरकने लगते
0: तो
1: हैं।
0: मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था
1: हाँ
0: मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते
1: हाँ
0: हैं और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
1: किसने
0: जाना,
1: जाना, सुनते
0: तो
1: हैं।
0: बस यही गाना सुनते हैं।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार। तो आरती देखो, हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी, और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफी कुछ बातें हमें बताई।
0: जी
1: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
0: बिल्कुल, ये
1: कुछ
0: भी फिटनेस
1: राज।
0: में ही आता है।
1: तो ये उन्होंने हमें
0: जी
1: बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
1: हाँ,
0: उसमें।
1: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
0: बिल्कुल।
1: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि
0: जी
1: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो
0: बिल्कुल,
1: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
0: क्योंकि इतने

0: काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें, ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
1: हाँ,
0: जाएगी।
1: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
0: जी
1: घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती
0: जी
1: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है, और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
0: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के, तो वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज्यादा से ज्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीजें ले सकते हैं, और ये जो जंक फूड होते हैं, वो जो बहुत ज्यादा मीठे चीजें होती हैं, उनको अपना लें तो ज्यादा बेहतर है।
1: हाँ, डिब्बा बंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है,
0: जी
1: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज
0: बिल्कुल,
1: बनाकर
0: क्योंकि हम
1: खाएं तो।
0: छोटी सी भी चीज जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
1: बिल्कुल।
0: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है।
1: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
0: बिल्कुल। और जीवन के अलग अलग चरण है, जैसे किशोरावस्था हो, या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है, या रोजनवृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का
0: बिल्कुल
1: सामना करना पड़ता है उनको, जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है।
0: बिल्कुल
1: इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
0: बिल्कुल। अगर आप
1: जरूरी
0: जिम
1: है।
0: नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं, तो आप
1: बिल्कुल।
0: घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
1: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग, मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी है वो ये भी लिख रही है कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है, ऊर्जा और आत्मविश्वास, फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखती है कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ, संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ, मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है, पिलेट स्कोर, स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिजाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिजाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिजाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था, यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
0: बिल्कुल। और ये साड़ियां मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
1: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
0: और ये जो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों
1: जब वो त्योहार जब वो पहन के आती ना तो पता चलता है त्योहार है।
0: बिल्कुल। और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है, तो वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षेत्रीय धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग अलग डिजाइन को दिए गए हैं
1: जी। और फिर है मोइरोंग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं और इसे GI मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखेई फी ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखेई क्षेत्र में बुना जाता था।
0: और जी सामी लामी फी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों और पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है
1: जी। और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो या फिर आपके कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर जाते हो तो वहां से एक साड़ी जरूर मंगवाइएगा, उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि
1: हम्म,
0: शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें खुलती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब ये होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च
1: बिल्कुल
0: के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं, और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है, और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है, या एक और एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन
1: हाँ
0: ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है।
1: जी
0: हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय
1: जी
0: से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
1: जी और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मित्रता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ये उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत
1: गीत
0: सुनना
1: सुनना
0: है।
1: है।

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है, अच्छा। महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीजें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है किनारों से, इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके और थोड़ा दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं।
1: बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसा रेसिपी बता दी आपने।
0: बिल्कुल पारंपरिक जो रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद वो निकल
1: जाता था। खाली मिक्सी में आप पीस दे तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल अब और भी व्यंजन।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, 1/2 चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से जा सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ ले और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेके, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना ले इसका। अच्छा। वो तैयार कर ले और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके, अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल ले, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी चीज है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन भी उसमें आप ले सकते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का। तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबलस्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंद सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा फिर, वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए, लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए, तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए, फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए, फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है, इन्होंने रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक ले या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल ले और ये स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल ले और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
1: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप ज्वार का आटा, तीन बारीक कटा हुआ प्याज, तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक मुट्ठी कटा हुआ ताजा धनिया, तीन कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, दो चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब एक बाउल में जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें, तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको, फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं आलू का मसाला या

0: आप ऐसे भी खा सकते हैं।
1: बिल्कुल, जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे
0: बिल्कुल
1: इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी
0: बिल्कुल।
1: बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें
0: अरे
1: लिख के
0: वाह,
1: भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं है कि उसे पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बना के
1: एक
0: देखिए
1: गीत हम यहाँ सुन लेते
0: जी।
1: हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल, इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल,
0: इसी के
1: स्वस्थ
0: साथ,
1: रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन हैं। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।

0: बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस
1: जिस
0: देश
1: देश में
0: में
1: गंगा
0: गंगा
1: बहती
0: बहती
1: है।
0: है।
1: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
2: नमस्कार यूनुस भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
1: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
0: नमस्कार
1: थैंक यू
0: यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
1: मुख्तार और गोविंद जी। आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहां से शुरू होते हैं?
2: जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ,
1: वाह वाह,
2: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे,
1: वाह
2: तो
1: वाह
2: इस
1: वाह
2: तरह से
1: वाह।
2: मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज की तरफ ज्यादा,
1: ये किस शहर की बात है?
2: अहमदाबाद की, जहां मैं रहता हूँ, मेरी
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल।
2: पैदाइश वहीं की है।
1: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो
2: जी
1: झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
2: जी
1: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
0: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के, और जहां पे मैं सीखता था बेसिकली इलाहाबाद, जहां का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहां पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कंपटीशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात
1: हाँ,
0: नहीं, वो गाने का मौका मिला,
1: क्या बात है।
0: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया
1: क्या बात है,
0: इसमें।
1: तो वही गाना सुनाइए फिर।
0: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल
1: क्या
0: होगी।
1: बात है, क्या बात है। एक और बात, गोविंद के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं
0: जी
1: पढ़ रहे थे?
0: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ,
1: हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी।
0: दोनों अलग अलग है। अभी म्यूजिक का शौक था, और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली मैंने प्रयागराज संगीत समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो इस
1: बगावत
0: प्रोफेशन को
1: करनी
0: मैंने
1: पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
0: चुना। कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ, मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ,
1: अच्छा, ये भी
0: क्योंकि
1: हुआ है।
0: हाँ गाँव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया, उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, इतनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है, तो बस वो चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है,
0: हाँ नहीं जी जी
1: सिंगर है। मुख्तार भाई आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
2: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे
2: क्या बात है।
1: बाप रे बाप,
2: हाँ
1: ये क्या मामला
2: और
1: है।
2: मैं मतलब मैं ऑफिशियली वैसे मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर, मैं जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा,
1: जी
2: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में,
1: हाँ,
2: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है
0: सच में सच में।
1: कोर्टरूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं,
2: लेकिन
1: तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता
2: शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते हैं ना कि,
1: जी जी
2: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है
1: हाँ
2: आज भी,
1: हाँ
2: मतलब मेरा एनरोलमेंट है,
1: जी
2: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया, और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था, तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
1: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं। हाँ। क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं।
2: जी जी।
1: पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आप को कम गाने का मौका मिला।
2: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद।
1: क्या
2: में,
1: बात, क्या बात, सरदार मलिक साहब का संगीत है।
2: जी जी। तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है।
1: वाह वाह वाह।
2: तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका।
1: एक गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे इनाम लेकर।
2: वाह, क्या बात है। वो भी डांसिंग का म्यूजिक है।
1: ये डांसिंग का म्यूजिक।
2: तो दो लाइनें हो
1: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते,
0: बिल्कुल
1: तो क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि मार्क बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उठता नहीं।
0: क्या बात। अच्छा मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
1: जिन

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: बहुत लगाव था और
1: जी
0: उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है, मुख्तार भाई?
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है,
0: बिल्कुल
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है, ज्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार,
1: जी
0: इसलिए जो सैड सॉन्ग्स हैं उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से
1: यही
0: जोड़कर
1: यही
0: देखा जाता है। गोविंद, आप ये मानते
1: यही
0: हैं?
1: इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड
0: हाँ
1: को ही प्रेफर करूंगा।
0: अच्छा।
1: लेकिन लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं, और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूं कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: मतलब
0: है,
1: 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को
0: वाह।
1: ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
0: हाँ ये बहुत जरूरी बात है, तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर गाइए।
1: चार

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने।
0: हाँ।
1: तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना है फिरोज खान, मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो तुमको हो पसंद।

0: तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे।
1: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया है। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
2: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए उनके गाने,
1: वाह वाह,
2: जैसे फिल्म कभी कभी का।
1: हाँ,
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,

0: इतना अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज्यादातर हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज्यादातर नेदरलैंड से लोग जो है सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहां रफी साहब से कुछ ज्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते हैं।
0: क्या बात है,
1: ये की देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती है?
2: शायद नंबर की ज्यादा आती है।
0: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल,
0: अच्छा
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
0: हाँ। बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
0: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा,
1: है ना?
0: तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूं, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उटपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। गले के लिए खास सबसे पहला वही जरूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ

0: नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
1: गोविंद आप
0: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तब ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है, खा लो थोड़ा सा, कर सकते थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ, क्योंकि तो समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ, और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक एक नोट पे रहता हूँ मैं
1: बिल्कुल,
0: पांच पांच दस
1: इलाहाबादी
0: दस मिनट
1: व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते
0: नहीं आते,
1: हैं।
0: लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ चला इलाहाबाद नहीं खा
1: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है।
0: थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता
1: अच्छा
0: है।
1: ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं ये मुझे पता है, तो किन गजलों का
0: उतनी
1: जिक्र?
0: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है,
1: जी
0: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है तेरी।

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें
1: यस
0: बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं। और
0: क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना?

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: क्या बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना।
1: मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ गुजराती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने

0: अगर वक्त मिला तो।
1: गोविंद,
2: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ। बहुत मजा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
1: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु।
2: मैं आगे, सोच ही रहा था। सोच सोच के जो है
1: चुपके चुपके रात दिन
2: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके।

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है
0: ओ यस
1: गजलों का, जब
0: यस,
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: एग्जैक्टली।
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज ठीक से निकल जाए, आवाज चल जाए,
1: हाँ
0: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा सा, अगर ऐसा सोचते, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है, दिल
1: हाँ
0: से धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है, और
1: अच्छा।
0: मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ नहीं।
1: अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा, भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना आज,
0: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर
0: आप
1: वाले पे छोड़ दो।
0: ऊपर वाले को, हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई
1: हाँ
0: संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते,
0: जी
1: अमूमन आपको सब गाने याद हैं।
0: जी
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
0: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को, अब पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी,
1: बिल्कुल।
0: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो गाने भी उसी वक्त से, मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं, तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है वो।
1: चलता चला जाता है। तो
0: हाँ
1: कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए
0: जी
1: मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा
0: और
1: है।
0: वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी, एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है, तो वो नजर वहां जाएगी, वो कहते हैं ना कि
1: अरे
0: अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है। तो खरीदना ही नहीं चाहिए
1: सच में।
0: बैंडेज।
1: गोविंद, कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
0: हाँ कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है,
1: हाँ।
0: मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है, लेकिन कुछ गाने बहुत याद हैं, कुछ गाने एकदम पूरे याद है, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब

0: कभी नहीं गाया है या पहले दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है,
1: अच्छा,
0: लेकिन फिर
1: इतने
0: भी
1: सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
2: मैं अब इन दिनों अभी

0: कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है, लेकिन
1: इतने
0: फिर भी
1: सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
2: मैं अब इन दिनों अभी

0: बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए दिखा है,
1: जी
0: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
1: जी जी
0: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें हैं, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटी है।
1: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में, जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया, अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं, तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे, उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
0: इतनी तो बारीकी से,
1: इतनी
0: वो
1: बारीकी से जो सुनना
0: जी,
1: ये
0: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
1: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग, जहां आप नोट्स आपको करते हैं, वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जो गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ खत्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
0: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
2: हाँ, हाँ, हाँ,
0: वो गाना सुनते हैं आपसे।

0: क्या बात है। इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया, तो
0: हाँ
1: मैं वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है म्यूजिक, लगाया
0: हाँ
1: हुआ नहीं है
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
1: उसका।
0: कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव, कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफी सारे फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती
1: है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह।
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो शुरू हो जाता है,
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था। बस
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं, मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं, शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहां होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होकर गाया है,
0: वो तो हार्मोनियम लेके,
2: हार्मोनियम लेके
1: तो, लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने
1: काफी शोज इनके साथ किए, तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा, मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे जितना। अच्छा, आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई की पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
2: सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो,

0: झुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया।

क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है।

0: पार्श्वगायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुने दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे, साथ ही इस बारिश के मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दीजिए और साथ ही सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी। चलिए आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी हम करेंगे ढेर सारी बातें चर्चा से जुड़ी और साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब सुबह उठते ही आपका मोबाइल काम करना बंद कर दे, ना इंटरनेट चले, ना ऑनलाइन कोई काम हो, डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएं, क्या होगा? शायद पूरा दिन रुक जाएगा, क्योंकि आज हम पूरी तरह से डिजिटल दुनिया पर निर्भर हो गए हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक डिजिटल तरीके से जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डिजिटल दुनिया पर आज हम इतना निर्भर हैं, उसे आगे बढ़ाने वाला कौन है? कौन है जो नई तकनीक विकसित कर रहा है, नए स्टार्टअप बना रहा है, डिजिटल समाधान खोज रहा है और भारत को विश्व के डिजिटल मानचित्र पर नई पहचान दिला रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है भारत के युवा, क्योंकि हमारे देश की युवा शक्ति है जो डिजिटल तकनीक को एक नए रूप और नई ऊंचाई के साथ आगे लेकर चल रही है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। आज भारत विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा शक्ति डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना है जिसमें तकनीक के माध्यम से हर नागरिक को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। इस सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, भारत आज तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश के युवाओं की है। युवा ऊर्जा, नवाचार और नई सोच के प्रतीक होते हैं। यही युवा की शक्ति सही दिशा में प्रयुक्त हो तो भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के युवा तकनीक से भली भांति परिचित है। वो स्मार्टफोन, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और सोशल मीडिया जैसे आधुनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि युवा डिजिटल इंडिया अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। साथियों, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक ने नई संभावनाओं को द्वारा खोले हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भी देश में बड़ा परिवर्तन किया है। इसके साथ ही युवाओं की एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है डिजिटल साक्षरता का प्रसार। हमारे देश में आज भी अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का सही उपयोग नहीं आता। ऐसे में युवा अपने परिवार, गांव और समाज के लोगों को डिजिटल तकनीक का सुरक्षित और सही उपयोग सिखाकर डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को सफल बना सकते हैं। दोस्तों,

0: खबरें, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समाज के लिए एक चिंता का विषय भी है। इसलिए युवाओं को केवल तकनीक का उपयोग ही नहीं बल्कि उसका जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ उपयोग भी करना चाहिए। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखना और इंटरनेट का सकारात्मक उपयोग करना प्रत्येक युवा का कर्तव्य है। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। यदि हमारे युवा अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का सही उपयोग करें तो भारत डिजिटल क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों की सफलता युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। डिजिटल इंडिया के बारे में तो हमने जान लिया कि इसकी अच्छे पहलू क्या हैं, और एक बुरा पहलू ये भी है कि हम जितना सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहेंगे धोखाधड़ी के मामले भी उतने ही सामने आते हैं। आज के समय में साइबर सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। तो दोस्तों, आइए एक वार्ता के द्वारा जानते हैं इस विषय से जुड़ी बातें। वार्ता का विषय है साइबर सुरक्षा, आज की जरूरत, कल की तैयारी। वार्ताकार है अंजलि केसरी।
1: नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंजलि केसरी है। मैं BSc थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज उपस्थित हूँ आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रचलित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो दिखता तो अदृश्य है लेकिन असर करता है हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर। दोस्तों, वह महत्वपूर्ण मुद्दा है साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो साधारण मोबाइल यूज़र हैं, बस UPI का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर थोड़ी चिटचैट कर लेते हैं, तो आखिर हमारे पास ऐसा क्या है जिसे कोई चुरा ले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं कुछ आप बीती से, जिससे आपको इस विषय की गंभीरता का अंदाज़ा लगेगा। सबसे पहले आपके साथ साझा करती हूँ राजू नामक युवक की कहानी, या यूँ कहें कि हम बात करने जा रहे हैं राजू की डिजिटल भूल के बारे में। दोस्तों, राजू एक साधारण नौजवान है जो कानपुर का निवासी है। वह सोशल मीडिया, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन ऐप आदि का उपयोग करता है और हर व्हाट्सएप मैसेज को, जो कि फॉरवर्डेड होता है, उसे ज़रूरी समझकर खोल देता है। एक दिन उसे एक SMS आता है कि आपका पेटीएम बंद हो रहा है, तुरंत लिंक पर क्लिक करें। राजू घबरा कर लिंक पर क्लिक कर देता है और एक ऐप डाउनलोड करता है। और फिर क्या, अगली सुबह जब वह दूध लेने निकलता है तो बैंक से मैसेज आता है, आपके खाते से 50,000 रुपये कट गए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, राजू अकेला नहीं था, दिल्ली की एक रिटायर्ड टीचर के साथ भी यही हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पोते के कहने पर एक QR कोड स्कैन कर दिया। और तो और दोस्तों, यही हाल एक ट्रेन में यात्रा कर रही मधु शर्मा का भी हुआ था। यात्रा के दौरान बगल में बैठी महिला ने कहा, बहन जी यह ऐप डाउनलोड करके देखिए, बहुत बढ़िया सौदा है। मधु जी ने ऐप डाउनलोड किया और फिर उनका फ़ोन अचानक बंद हो गया। कुछ देर बाद पता चला कि उनका पूरा फ़ोन क्लोन यानी हैक हो गया था। उनका बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया, मेल इत्यादि सब ठप हो चुके थे। आज वो हर जगह यही कहती हैं, डिजिटल बनो लेकिन अंधविश्वासी मत बनो। साथियों, अब जरा समझते हैं कि यह सब होता कैसे है। आइए जानते हैं साइबर अपराध क्या होता है और उसमें क्या क्या शामिल है। साइबर अपराध यानी कोई ऐसा गैर कानूनी काम जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल के जरिए किया जाए, जैसे झूठे लिंक भेजकर पासवर्ड चुराना जिसे फिशिंग भी कहते हैं, किसी का डेटा लॉक कर देना और फिर पैसे मांगना, अथवा किसी की जानकारी के बिना उसके फ़ोन को कंट्रोल कर लेना, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके ब्लैकमेल करना, और तो और फर्जी बैंकिंग ऐप बनाकर पैसे उड़ाना भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 90% अपराधों में दोष हमारी लापरवाही का ही होता है। श्रोताओं, सोचिए, क्या कभी आपके पास ऐसा फ़ोन कॉल आया है कि आपका बैंक खाता बंद हो रहा है? क्या कभी किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई है? या कभी आपसे कहा गया हो कि पैसे भेजो, QR कोड स्कैन करो और फ्री गिफ्ट पाओ? दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है तो समझिए कि आप भी निशाने पर हैं। यह वह संकेत है जो दर्शाते हैं कि साइबर अपराध को समझना कैसे है और उस

0: से किस तरह निपटना है। आइए अब बात करते हैं साइबर अपराधियों के कुछ नए तरीकों के बारे में जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, 2025 में साइबर अपराधियों के पास AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही चालाकी से करते हैं जिससे आम आदमी उसमें फंस ही जाता है। आजकल के मैसेज में ये सिर्फ आपको प्रिय ग्राहक कहकर संबोधित नहीं करते बल्कि ये आपको आपके नाम से बुलाते हैं, आपकी भाषा में बात करते हैं और तो और आपकी तस्वीर को AI से बदलकर फेक वीडियो भी बना देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता क्यों है। एक केस में तो किसी को उसकी माँ की आवाज़ में फ़ोन आया, बेटा जल्दी पैसे भेजो। शब्द वही थे, आवाज़ भी वही थी, पर कॉल था एक ठग का। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साधारण लोग, बच्चे एवं गृहणियाँ इसे असलियत समझकर साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने अनेकों प्रयास किए हैं जिनके द्वारा इन सभी को रोका जा सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सरकारी प्रयासों और कानून के बारे में। स्वाभाविक है आप सभी भी जानना चाहते होंगे कि आखिर सरकार कर क्या रही है। भारत में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। cybercrime.gov.in जैसी वेबसाइट तैयार की जा रही है जहां आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यही नहीं, हर जिले में साइबर पुलिस की टीम तैयार की गई है। और तो और, इसरो और DRDO मिलकर भारत का पहला क्वांटम सेफ नेटवर्क बना रहे हैं, यानी ऐसा इंटरनेट जो हैक प्रूफ होगा, अर्थात उसे कोई हैक नहीं कर पाएगा और हम सब सुरक्षित रह सकेंगे। और हाँ, अब तो डिजी कवच और वास्तव.AI जैसे सिस्टम आ चुके हैं जो डीप फेक और धोखाधड़ी को पहचान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, साथ ही साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो चलिए खुद से कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या आपके सभी अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन है, या फिर क्या आप हर ऐप को इंस्टॉल करने से पहले सोचते हैं, क्या आप किसी अजनबी के भेजे लिंक पर क्लिक नहीं करते, अथवा क्या आपने अपने बैंक का कस्टमर केयर नंबर कभी गूगल से नहीं बल्कि बैंक की वेबसाइट से लिया है। अगर इन सब का जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप डिजिटल दुनिया में एक सतर्क नागरिक हैं। दोस्तों, यदि इन सभी बातों का हम ध्यान रखें और किसी भी अनजाने लिंक को खोलने में जल्दबाजी ना करें तो बड़े ही आसानी से हम इन अपराधों से बच सकते हैं। साथियों, आइए जानते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। आपको पता है भारत में हर दिन औसतन 4000 से अधिक साइबर अपराध होते हैं। यही नहीं, 2024 में तो सिर्फ UPI फ्रॉड से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इन सब का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं बुज़ुर्ग लोग, स्टूडेंट्स और गृहणियाँ। और हाँ, साइबर ठगों को आपकी शक्ल या जात पात से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस आपका डेटा चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वे अपने काम को अंजाम दे सके। अंत में आपके साथ सुरक्षित रहने के कुछ मंत्र साझा कर रही हूँ, उम्मीद है आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। तो सबसे पहला मंत्र है, सोचो समझो फिर क्लिक करो, जिसका विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। अगला है, जो मुफ्त दिखे उसमें सबसे बड़ा नुकसान छिपा होता है। और अंततः, किसी को OTP बताना खुद ही ताला चाबी सौंप देने जैसा होता है। आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सुविधाएं तो हैं वहीं खतरे भी हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। आपका छोटा सा एक्शन, जैसे किसी बुजुर्ग को सही ऐप डाउनलोड करवाना या किसी मित्र को OTP के बारे में समझाना, एक बड़ी धोखाधड़ी को रोक सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा हेतु। तब तक डिजिटल रहें लेकिन सुरक्षित रहें।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, तो हमने जाना इस वार्ता के द्वारा बहुत सारी बातें साइबर सुरक्षा से जुड़ी जो हमारे लिए आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वार्ता का विषय था साइबर सुरक्षा, आज की ज़रूरत, कल की तैयारी। वार्ताकार थी अंजलि केसरी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। अब चले चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान,
1: स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चुर्क और घोरावल के साथ ही साथ उच्च शिक्षा में लाया है बेहतर विकल्प।
0: स्वामी हरसेवानंद पीजी कॉलेज चुर्क में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए,
1: एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। ज्ञान, संस्कार और सफलता की सशक्त पहचान,
0: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान।

0: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
3: कहाँ?
2: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह जब हम उठें और नल खोलें लेकिन उसमें पानी की एक बूंद ना आए, क्या होगा? प्यास कैसे बुझेगी? खाना कैसे बनेगा? खेत कैसे सींचे जाएंगे? यही सवाल हमें आज से नहीं, अभी से सोचने की जरूरत है। दोस्तों पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है, फिर भी हम इसे अक्सर असीमित समझकर व्यर्थ बना देते हैं। आज बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित भूजल दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे समय में जल संचयन यानी वर्षा के जल को संग्रहित करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। दोस्तों जल संचयन का अर्थ है वर्षा के पानी को तालाबों, कुओं, टैंकों या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से इकट्ठा करना और उसे भूजल स्तर बढ़ाने या आवश्यकता के समय उपयोग में लाना। यह न केवल भारी पानी की बचत करता है बल्कि सूखे की स्थिति में भी राहत देता है। और दोस्तों अभी वर्षा का समय आ गया है तो इस समय हमारी जल संचयन की जरूरत और बढ़ जाती है। अभी हम जल संचयन करेंगे तो हमारे आने वाले समय में ये पानी हमारे काम आएगा। दोस्तों हम सभी अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठाकर जल संचयन कर सकते हैं, जैसे घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर, नलों को खुला न छोड़कर, वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोककर, तालाबों, कुओं और जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण करके, बच्चों और समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर। फ्रेंड्स याद रखिए, पानी बचाना केवल सरकार का ही नहीं हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि आज हमने जल का सम्मान नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से जल का उपयोग हो रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए तो जल बचेगा ही नहीं। इसलिए हमारे कल के भविष्य को सुधारने के लिए हमें आज से जल संचयन के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, और सिर्फ सोचना ही नहीं चाहिए बल्कि उसके लिए हमें कार्य भी करने चाहिए। दोस्तों तो आइए आज से हम ये सोच लेते हैं कि हम पानी की बूंद बूंद बचाएंगे, जल का सम्मान करेंगे और जल संचयन को अपनी आदत बनाएंगे, क्योंकि जल है तो कल है, हर बूंद अनमोल है, इसे बचाना हम सबका लक्ष्य और दायित्व है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे इस विषय पर बातें बस यहीं तक। और दोस्तों और एक खास बात फ्रेंड्स, बारिश का मौसम आ गया है तो बारिश के मौसम में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि बारिश के मौसम में पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, हमें फुल कपड़े पहनने चाहिए, घर में मच्छरों के आने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये बारिश के मच्छर जब हमें काटते हैं तो हमें बीमारियां होती हैं। बाहर का कोई भी स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस पे मच्छर मक्खियां भनभनाती हैं। इसलिए हमें कभी भी गर्म खाना खाना चाहिए और तले मसाले खाने का सेवन कम करना चाहिए। फ्रेंड्स इन्हीं बातों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं तक। अब अपना ख्याल रखिए और अपनी रेडियो फ्रेंड को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: सब मिलकर अब ये ठाने आलस को दूर भगाएं। अपने काम खुद करके हम सबको खुशियां दिलवाएं। इसी के साथ कार्यक्रम बाल संघ की हो रही है शुरुआत। मैं हाजिर हूं आपकी बबीता दीदी आपके साथ, करती हूं सभी बच्चों का स्वागत। और बताइए बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है नई क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने काम खुद कर रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि अपना स्कूल बैग खुद तैयार करते हैं और जो खिलौने खेल लेते हैं उसके बाद उसको सही जगह पर रखते हैं, कुछ बच्चे तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, हम तो रखते हैं, हाँ कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं तो। कुछ बच्चे एकदम चुप हो गए, मतलब उनका जवाब ना है, वो खेलते हैं खिलौने वहीं छोड़ दिए, पढ़ाई करी किताबें कॉपियां वहीं छोड़ दी, ऐसा करते हैं ना कुछ बच्चे। ना वाले बच्चों को कुछ कहा नहीं जा रहा है, डांटा मारा भी नहीं जा रहा है, उनके लिए बस एक संदेश दिया जा रहा है। वो क्या है संदेश? कि अपना काम खुद करने की बस आज से ही आदत डाल लीजिए और कुछ नहीं कहा जा रहा है आप लोगों को। जानते हैं बच्चों, अपने छोटे छोटे काम खुद करने से आत्मनिर्भर बनते हैं, सफल होते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? मम्मी मेरा बैग तैयार कर दो ना, प्लीज कर दो ना मम्मी, देर हो रही है, स्कूल का टाइम हो रहा है, बस आने वाली है या रिक्शा आने वाला है और हम अभी तक तैयार नहीं हुए, आप प्लीज मेरा बैग लगा दो। तो मम्मी क्या कहती हैं? बेटा बड़े हो रहे हो, खुद से करो। फिर आप लोग बोलने लगते हैं, मम्मी किसी विषय की कॉपी किताब छूट जाएगी तब क्या होगा, फिर सर डांटेंगे, फिर मैम क्लास से बाहर निकाल देंगी, हमको डांट पड़ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, आप मेरा बैग लगा दो। तब मम्मी यही समझाती हैं, गलती से ही तो सीखेंगे, एक दिन ठीक से बैग नहीं लगेगा तो अगले दिन आप खुद से अपने आप सही लगाने लग जाएंगे, गलती से ही बच्चों सीखा जाता है।

बच्चों कुछ इजी इजी काम है जो आप खुद से कर सकते हैं पर करना नहीं चाहते। अरे मम्मी कर दे रही हैं, बड़े बहन भाई घर में हैं, वो लोग कर दे रहे हैं, तो हम तो अपना मस्ती कर रहे हैं। छोटे छोटे काम करिए ना, जैसे अपना बेड ठीक कर लिया, सो के उठे बेडशीट ठीक कर दी, स्कूल बैग जैसे मैंने अभी पहले भी कहा खुद से तैयार कर लिया, स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म होती है, टाई है, बैच है, शूज़ हैं, सही जगह पर रख दिया, उनकी एक जगह होगी ना कि शूज़ शूज़ रैक में रखने हैं, यूनिफॉर्म अपनी जहाँ टांगनी है वहाँ टांग दी, या मैली हो गई है तो उसको धोने में रख दी, रात में ही शूज़ पॉलिश कर दिए, सुबह का झंझट ही नहीं, सब अपनी यूनिफॉर्म भी निकाल ली, देखी प्रेस है कि नहीं है, और बैग भी लगा लिया, रात में ही ये सब काम कर लेने चाहिए। छोटे छोटे काम हैं आपको खुद करने चाहिए, ये नहीं कि और वो आप लोग हाँ करते हैं, पढ़ाई कर ली, कॉपी किताबें सब वहीं छोड़ दी, हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया भाई, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने तुम कॉपी किताब वहीं छोड़ देंगे, मम्मी रख देंगी, अब मम्मी हटा देंगी वहाँ से, बल्कि आप उन्हें जगह पर रखिए, बैग से निकालिए तो बैग में रखिए, और अगर स्टडी टेबल पर रखी थी तो उसको वहीं पर जाके रख दीजिए। ऐसे ही खेलने के बाद खिलौने भी जगह पर रखिए। खाना खाया फिर अपनी प्लेट किचन में रखा है, मम्मी का वेट नहीं किया कि मम्मी आएंगी तो हमारी प्लेट हटा देंगी, मम्मी तो हटा ही देंगी, आप लोग ने क्या किया फिर? ये छोटे छोटे काम है जो आपको खुद से करने हैं। पानी की बोतल वो भर के रख दी। बच्चों ये सब छोटे छोटे काम आपको बताए गए हैं, लेकिन इससे आदतें बहुत अच्छी बनती हैं। आप कहीं भी जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे, क्योंकि ये आदतें होंगी अच्छी वाली, तो सब लोग पसंद करेंगे कि अरे वाह खाना खाया, देखो अपनी प्लेट जगह पे रखा है, अपना कोई सामान निकाला फिर उसके बाद उसको अपना जगह पे रख दी। अपने काम खुद करने से फायदे बहुत हैं, आप आत्मनिर्भर बनते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अनुशासन की आदत बनती है, और मम्मी पापा तो खुश हो ही जाते हैं। अब आप क्या कहेंगे? धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, छोटी छोटी अच्छी आदत से हम सब आगे बढ़ते हैं, हम सब आगे बढ़ते हैं।

0: चलिए बच्चों, अब बातों के बाद ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: डेंगू चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर से बाल संघ कार्यक्रम में सभी बच्चों का स्वागत है और मैं आपकी बबीता दीदी। चलिए अब जानते हैं आसमान के अद्भुत रहस्यों के बारे में। इसके लिए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है आसमान के अद्भुत रहस्य और इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन के शिक्षक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव जी और इनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा। बच्चों आज हम बात करेंगे आसमान के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में, जैसे आसमान नीला क्यों होता है, बादल कैसे बनते हैं, बिजली क्यों चमकती है और एक मजेदार 7 रंगों का इंद्रधनुष कैसे बनता है। इन रोचक सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन के विज्ञान शिक्षक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव जी हैं। सर आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: बच्चों कभी बहुत गर्मी तो कभी सर्दी, कभी तेज बारिश हो जाती है, मौसम अपना मूड बदलता रहता है। क्यों बच्चों आपका भी तो मूड बदलता है, कभी रोने लग जाते हैं तो कभी हंसने लग जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं तो कभी बहुत खुश हो जाते हैं। आपकी तरह मौसम का भी मूड बदलता है, लेकिन इसके पीछे कोई कारण तो होगा। कारण जानने के लिए हमारे साथ विज्ञान के शिक्षक हैं, तो सर आज आप बताइए कि मौसम बदलने के पीछे क्या कारण है।
3: मौसम में बदलाव के कई कारण होते हैं
2: जी।
3: इसमें सबसे पहला कारण है कि पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है
2: जी।
3: और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर सूर्य की किरणें कभी सीधी कभी तिरछी पड़ती हैं
2: जी।
3: जहां किरणें सीधी पड़ती हैं, बबीता जी देखिए मौसम में बदलाव कई कारणों से होता है
2: जी।
3: पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। इस झुकाव के कारण पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर सूर्य की किरणें कभी सीधी कभी तिरछी पड़ती हैं
2: जी।
3: जहां किरणें सीधी पड़ती हैं वहां अधिक गर्मी होती है
2: जी,
3: और जहां तिरछी पड़ती हैं वहां ठंड सी होती है। इस कारण आप देखेंगे कि साल भर में गर्मी सर्दी बरसात जैसे अलग अलग ऋतुएं आती हैं। इसके अलावा भी मौसम बदलने का कारण होता है हवा का दबाव।
2: अच्छा।
3: हवा का दबाव और हवा की नमी की मात्रा, समुद्र से आने वाली गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं, सूर्य की गर्मी, ये सब मिलकर रोज का मौसम, जैसे कभी तेज धूप कभी बादल कभी बारिश, इसको प्रभावित करते हैं
2: जी।
3: इससे जुड़ा हुआ विज्ञान भी है जिसे मौसम विज्ञान या मेट्रोलॉजी भी कहते हैं, और इनका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को मौसम वैज्ञानिक कहते हैं
2: जी।
3: तो इन सभी कारणों को अगर देखा जाए तो मौसम हमेशा बदलता रहता है।
2: बहुत अच्छे से आपने बताया, बच्चे भी समझ गए होंगे मौसम बदलने के पीछे क्या कारण है। सर कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि आसमान नीला ही क्यों होता है, अक्सर करते हैं, आप तो एक शिक्षक हैं स्कूल में भी करते ही होंगे, हरा या लाल क्यों नहीं होता। आप बच्चों को समझाइए कि आसमान नीला क्यों होता है।
3: बहुत ही वाजिब सवाल है
2: जी
3: कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। वैसे अगर सूर्य के प्रकाश को अगर आप देखें तो सफेद होता है
2: जी जी,
3: लेकिन ये सफेद असल में है नहीं, यह मुख्य रूप से 7 रंगों से मिलकर बना है
2: जी।
3: इसमें बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे हम शॉर्ट में विबग्योर भी कहते हैं। और जब यह प्रकाश जो सभी 7 रंगों को मिलाकर के सफेद हो गया है और जब यह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में मौजूद हवा के साथ साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनसे जब टकराती है सूरज की रोशनी तो वो प्रकीर्णित हो जाती है या फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है
2: जी।
3: इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं
2: जी।
3: प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसमें जो नीला रंग है, नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, अपेक्षाकृत लाल या हरा या पीला। तो नीला रंग सबसे ज्यादा फैल जाता है।
2: अच्छा।
3: और जैसे ही अब आसमान में से सूरज से वायुमंडल में किरणें आती हैं, नीला रंग सबसे ज्यादा फैल जाता है और वो आसमान में चारों तरफ फैल जाता है। तो इसलिए आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो अगर आप वायुमंडल के बाहर जाएं तो आपको आसमान काला दिखाई देगा
2: जी।
3: आसमान का कोई ऐसा रंग है नहीं।
2: हाँ हाँ।
3: आसमान का रंग ही तभी बनता है जब वायुमंडल में वो किरणें प्रवेश करती हैं।
2: हाँ।
3: और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है,
2: सबसे ज्यादा होता है।
3: और इसको सबसे पहले बताया था लॉर्ड रेले ने।
2: अच्छा।
3: तो इस प्रक्रिया को रेले स्कैटरिंग कहते हैं
2: जी। एक और सवाल है बच्चों, तब कितना अच्छा लगता है ना जब आसमान में सफेद सफेद रुई जैसे बादल आ जाते हैं, बड़ा मजा आता है देख करके, मन करता है ना कूद के उसको पकड़ लें। ऐसा तो हो नहीं सकता, बादल आखिर बनते कैसे हैं? ये तो हम जान ही सकते हैं ना कि बादल बनते कैसे हैं। तो सर आप बच्चों को अब बताइए कि बादल कैसे बनते हैं।
3: बादल सचमुच हम सभी को बहुत आनंदित करते हैं, लेकिन बादल बनने की प्रक्रिया एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है
2: जी।
3: सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदी, तालाब और गीली जमीन का पानी जो होता है वो भाप बनकर ऊपर को उठता है
2: जी।
3: इसे वाष्पीकरण कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि आपने पानी किसी भगोने में गर्म किया और उसको किसी ढक्कन से ढक दिया
2: जी।
3: तो कुछ समय के बाद आप ढक्कन हटाएंगे तो उस पर पानी के बूंदे लगी रहती
2: लगी रहेंगी। हाँ।
3: तो ठीक ऐसा ही वायुमंडल में भी होता है
2: जी।
3: जब ये जलवाष्प ऊपर जाते हैं और ऊपर ठंडी हवा में ये जलवाष्प हवा में मौजूद छोटे कणों के चारों ओर इकट्ठा होकर पानी के बहुत छोटी छोटी बूंदे या कभी कभी बर्फ में भी बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम कंडेंसेशन या संघनन है।
2: अच्छा।
3: पानी को
2: हाँ।
3: जो भाप है उसको पानी में बदलना संघनन कहलाता है। और जब ऐसी करोड़ों बूंदे आपस में मिल जाती हैं तो वे आकाश में तैरता हुआ रुई जैसा रूप ले लेती है जिसे हम बादल कहते हैं।
2: हाँ।
3: और जब ये बूंदे आपस में मिलकर बड़ी और भारी हो जाती और वो हवा में तैर नहीं सकती तो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती।
2: नीचे गिरती हैं तब। हाँ। अब बादल बनते क्यों हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन बादल गरजते क्यों हैं? आइए ये भी जान लेते हैं हम लोग आलोक सर जी से।
3: बादल गरजते क्यों हैं
2: जी?
3: गरज मतलब आवाज।
2: हाँ।
3: तो जब बादल बन गए तो बादल हवा के साथ घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं हवा में, और इस दौरान हवा से आपस में उनका घर्षण होता है। तो जब घर्षण होता है तो वो चार्ज हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं।
2: हाँ।
3: इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक से दूसरे में हो जाता है
2: जी।
3: तो आवेशित हो जाते हैं और उनके आसपास की हवा इस आवेश से अचानक बहुत तेज गर्म हो जाती है, और इतनी अचानक गर्मी में हवा जो बहुत तेजी से फैलती है या फिर सिकुड़ती है, इसमें वैज्ञानिक भाषा में इसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब तेजी से फैलती है, सिकुड़ती है, इस फैलने और सिकुड़ने के दौरान एक जोरदार धमाके जैसी ध्वनि तरंगे पैदा होती है जिसे हम बादल का गरजना या बादल की गड़गड़ाहट कहते हैं
2: जी।
3: और चूंकि प्रकाश की गति जो होती है वो ध्वनि की गति से बहुत ज्यादा होती है, तो आपने देखा होगा कि लाइट पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में आती है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि प्रकाश की गति बहुत तेज है
2: जी,
3: लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है और ध्वनि की गति लगभग 345 मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए आपको पहले लाइट दिखाई देती है और फिर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है।
2: बच्चों जब तेज बारिश होती है अचानक आसमान में वही चमक होती है, जैसे किसी ने लगता है ना ऐसे फोटो खींची हो, अगर अंदर हम लोग बैठे भी हो तो इतनी तेज चमक आ जाती है। तब मन में प्रश्न यही आता है कि पहले तो तेज चमक होती है और फिर कुछ सेकंड बाद जोरदार आवाज आ जाती है धड़ाम से, डर जाते हैं कहीं हमारे ऊपर ही तो नहीं गिर गई या हमारे आसपास तो नहीं गिर गई। आखिर बिजली गिरने का कारण क्या है और आसमान में बिजली क्यों चमकती है, जानते हैं श्री आलोक सर जी से।
3: जी मैडम, ये बिल्कुल वाजिब सा सवाल होता है कि बिजली जब तड़कती है तो चमकती पहले है।
2: हाँ।
3: और इसका सीधा सा उत्तर इसके पहले वाले प्रश्न में था आपका
2: जी,
3: कि प्रकाश की गति बहुत तेज है और ध्वनि की गति कम है। जब बिजली गिरती क्यों है तो इसके पीछे जो बादल के अंदर पानी की बूंदे हैं या बर्फ के कण हैं वो तेज हवाओं से आपस में घर्षण करते रहते हैं। इस घर्षण से चार्ज उत्पन्न होता है। हल्के और छोटे बर्फ के कण धनात्मक आवेश लेकर बादल के ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे
2: जी
3: वो बादल के ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं, और बादल का निचली हिस्सा नकारात्मक चार्ज वाला हो जाता है, और ये नकारात्मक चार्ज धरती पर भी प्रभावित करता है
2: जी।
3: तो नीचे जो धरती का जो सरफेस है उसके नीचे जो पार्टिकल्स हैं वो भी आवेशित हो जाते हैं।
2: अच्छा।
3: इसको इंडक्शन कहते हैं, इस प्रक्रिया को इंडक्शन कहते हैं
2: जी।
3: तो बादल का सबसे ऊपरी सतह पॉजिटिवली चार्ज है, उससे नीचे बादल का निचला सतह निगेटिवली चार्ज है और धरती वो की पॉजिटिवली चार्ज हो गई है
2: जी।
3: और जब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस मिलते हैं तो अचानक से बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा सीधे से नीचे की तरफ आती है।
2: अच्छा,
3: नीचे आती है और बादल के दूसरे हिस्से को आकर्षित करती है और ये आवेश सीधे हवा को चीरते हुए एक बहुत तेज चिंगारी के रूप में हवा से गुजरता है
2: जी।
3: इसे बिजली का चमकना कहते हैं और यह चिंगारी बादल से सीधे जमीन तक पहुंचती है और इसे बिजली का गिरना कहते हैं। और यह चिंगारी इतनी गर्म होती है कि रास्ते हवा भी चमकने लगती है जिसके कारण हमें तेज रोशनी भी दिखाई देती है।
2: हाँ।
3: तो इसे लाइटनिंग एंड थंडरिंग कहते हैं
2: जी जी।
3: और इस दौरान यह भी कहा जाता है कि आप जब थंडरिंग हो रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, तो किसी पेड़ के नीचे ना रहें।
2: हाँ।
3: आप क्योंकि पेड़ भी एक उसका उसके अट्रैक्शन का एक माध्यम बन जाता है
2: जी जी।
3: या बिजली के टावर्स हैं वहां ना रहें, खुले में रह सकते खुले में रह सकते हैं। और अगर बहुत तेज बिजली तड़क रही है तो घुटने के बल होकर के जमीन पे बैठ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जरूर हमें आकर्षित और आनंदित करती है
2: जी,
3: लेकिन
2: जी।
3: है बहुत खतरनाक, इससे हमें बचने की जरूरत है।
2: और बच्चों, जब बारिश रुकने के बाद सूरज देवता निकलते हैं तब आसमान में रंगों की एक, जैसे कहते हैं ना, पेंटिंग सी बन जाती है। वो होता क्या है? वो होता है इंद्रधनुष। मन करता है बार बार बाहर जाएं और उसे देखें। अब जानना ये है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। सर, आप बताइए बच्चों को, सात रंग का इंद्रधनुष कैसे बनता है?
3: सूर्य की जो किरणें हैं वो सफेद होती हैं और उसमें सात रंग होते हैं। जब उसको ये सात रंग कैसे निकलते हैं हम अपने लैब में देख सकते हैं। जैसे विज्ञान के लैब में जाएं, फिजिक्स लैब में जाएं, तो वहां पे एक प्रिज्म होता है
2: जी।
3: एक कांच का बना हुआ ट्रायंगुलर शेप का एक प्रिज्म होता है। उससे अगर हम लाइट को पास करें तो जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है तो सात रंगों में टूटी हुई सी रहती है। सबसे नीचे उसका कम वेवलेंथ का है, बैंगनी कलर है, और उसके सबसे ऊपर लाल रंग होता है, विप्योर होता है। तो जब बारिश की बूंदें, बारिश हो ही रहती है, तो बारिश की कुछ बूंदें आसमान में रुकी ही रहती हैं। वो बूंदें जो भारी हो गई वो तो जमीन पे गिर जाएंगी
2: जी।
3: और जो भारी नहीं हुई है, जो हवा में तैर सकती है, वो तैर ही रही होती है। और जब सूरज अचानक निकलता है तो ये जो बारिश की बूंदें हैं वो ठीक प्रिज्म की तरह काम करती हैं।
2: अच्छा,
3: प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो जब लाइट की बूंदें, लाइट की किरणें उन बूंदों से टकराती हैं और फिर वो सात रंग में टूट जाती हैं।
2: अच्छा,
3: तो वो सात रंग का एक रंग बनता है। लेकिन

0: विज्ञान के तीन सिद्धांत लगते हैं। पहले रिफ्रैक्शन होता है कि लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, एक हवा से पानी में लाइट जाती है
1: जी
0: तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, तभी वो सात कलर में टूट चुकी होती है।
1: जी जी
0: फिर एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि जब लाइट की बूंदें पानी में ही रिफ्लेक्ट होती हैं, जब पानी में रिफ्लेक्ट होती है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और तीसरा है रिफ्रैक्शन, फिर से पुनः परावर्तन।
1: अच्छा
0: तो जब ये बूंदें पानी से निकलती हैं तो फिर से उनके बीच का जो एंगल है वो बदल जाता है, जैसे किसी एंगल पे आकर के एक बार पानी के अंदर जाएंगे फिर पानी से बाहर आएंगे, तो एक हेमिस्फीयर के शेप में
1: जी
0: वो नजर आती है, और इस तरह से इंद्रधनुष बनता है। इस पूरे प्रक्रिया से सफेद प्रकाश अपने सात रंगों में टूटता है
1: जी
0: और ये रंग आकाश में एक धनुष के आकार में दिखाई देते हैं जिन्हें हम इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष आप देखेंगे तो हमेशा सूरज इधर निकल रहा है उसके विपरीत दिशा में बनता है,
1: विपरीत दिशा में,
0: उसी दिशा में नहीं बनेगा जिधर सूरज है, उसके विपरीत दिशा में बनता है। तो इस तरह से इंद्रधनुष बनता है
1: जी।
0: जो हमें बहुत ही आकर्षित करता है।
1: हाँ, तो आज हमने जाना आसमान के कई अनोखे रहस्य, बादल, बिजली, इंद्रधनुष का विज्ञान। अब जब भी बादल गरजेंगे, इंद्रधनुष दिखेगा, बिजली चमकेगी, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? हमें तो पता है, क्योंकि आपके श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आसमान के अद्भुत रहस्य, अभी आप लोग ने ये भेंटवार्ता सुनी, और जानकारी दे रहे थे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चोपन के शिक्षक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव जी, और इनसे बातचीत कर रही थी बबीता बत्रा। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी चर्चा की ओर। बच्चों, जो इतनी देर से हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, कभी सोचा कि कैसे हम अपनी आवाज से इन दूरियों को मिटाकर एक साथ एक सूत्र में बंधे हैं, और बंधे हैं रेडियो के माध्यम से। बच्चों, 23 जुलाई 1927 का दिन भारत के इतिहास में एक नई शुरुआत लेकर आया था, जब देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। तब इसे हर साल 23 जुलाई को भारतीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। गांव हो चाहे शहर, पहाड़, मैदान, कहीं भी रेडियो हर जगह अपनी पहुंच बनाता है। पहले के टाइम में क्या था? ना टीवी था, ना मोबाइल था। रेडियो ही मनोरंजन का, शिक्षा का, जानकारी, समाचार, सबका सबसे बड़ा साधन था। रेडियो का ही सहारा सब लोग लेते थे। बच्चों, रेडियो को आप अपना एक अच्छा साथी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। सबसे अच्छी बात है, रेडियो कहीं भी कभी भी सुना जा सकता है। इस समय देख लीजिए ना, आप कहीं भी होंगे, रेडियो के माध्यम से बाल संघ कार्यक्रम सुन रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी जानकारी मिली आप लोगों को, आसमान के अद्भुत रहस्यों के बारे में आपने जाना, और अब मनोरंजन कराने जा रहे हैं। अब आप रेडियो पर गीत सुनेंगे, तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, इसी गीत के साथ बाल संग कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो रहा है, तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, अपना काम खुद करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, आपका होमवर्क हो, और सबसे ज़रूरी बात समय से पढ़ाई करनी है, बाकी सब काम बाद में, पहले पढ़ाई। इसी के साथ अपनी बबीता दीदी को दीजिए विदा। बच्चों, जय हिंद।

अभी बच्चे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल संघ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। आइए सुनते रहते हैं ओबरा का प्रसारण और चलते हैं अपने गोरखपुर केंद्र, सुनते हैं भोजपुरी में समाचार।

0: 이 사마찬.
1: नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहले हमें कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से नीट परीक्षा पेपर लीक मामला पर चर्चा बदे तैयार हो। संसद परिसर में पत्रकार लोगों से बतियावत वहां के कहने की यह चर्चा बदे नियम का निर्धारण कर जाए के चाहिए। श्री रिजिजू कहने की सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती बा।
2: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हो तो बोलना ही है, चर्चा के दौरान हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
1: ए बिचे संसद के दोनों सदनन का कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामला आ कई गो मुद्दन पर विपक्ष के हंगामा के नाते अजो बाधित रहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरा पर पहुंचले। वहां के योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर शहर आ गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रन के बूथ अध्यक्षन के सम्मेलन में हिस्सा लेने। मुख्यमंत्री बिहने गोरखपुर में कई गो विकास कार्यन के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुई है।
3: मुख्यमंत्री कल 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहां टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर बने 6 लेन फ्लाईओवर के समीप आयोजित समारोह में 813.52 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 181.77 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किलोमीटर की लंबाई वाले और गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर से अंतर जनपदीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। इस फ्लाईओवर के जन समर्पित हो जाने से संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज
4: आजनक हो जाएगी। जी एन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
5: मुख्यमंत्री गोरखपुर के एनएक्सी भवन सभागार में जिला के अधिकारियों के साथ भेंट की कई के विकास कार्यन, बाढ़ से बचाव और जल निकासी की तैयारियों का समीक्षा कई ली। आज राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रदेशवासियों के यह दिवस का बधाई दे रहे हैं। उनकी कहानी के देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता, गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक हो। इस मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भईल एक आयोजन में तिरंगा लहरावल गई और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के महात्मों के बारे में जिक्र कई गये। जौनपुर औरैया के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में जल शक्ति अभियान, कैच द रेन और भू जल सप्ताह के तहत जल संरक्षण और जल संवर्धन बदे आज कई गो आयोजन कई गये। इस मौके पर जन जागरूकता वाहन रैली निकाल गई और लोगों के जल संरक्षण का शपथ दियावल गई। यही कड़ी में प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अंबेडकर नगर जिला में जन जागरूकता वाहन रैली के हरियर झंडी देखा के जल संरक्षण का संदेशा देने। बिहने से शुरू होके 2 अगस्त ले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहा राष्ट्रमंडल खेलिन में प्रदेश के 10 गो एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करी हैं। एगो रिपोर्ट।
6: गुलवीर सिंह 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ में पदक के लिए दौर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में किस्मत आजमाएंगे। जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3,000 मीटर स्किपल चेद और 5,000 मीटर की दौड़ में भाग लेंगी। प्रियंका गोस्वामी 10,000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 4x400 मीटर की रिले दौड़ में पदक प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की अस्मिता डे जूडो में हाथ आजमाएंगी। बॉक्सिंग में आगरा के आदित्य प्रताप सिंह पदक जीतने की कोशिश करेंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग ले रहे हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: मौसम विभाग आज व बिहने प्रदेश के पूर्वी इलाकन में कुछ जगहों पर बरखा का संभावना जतौले हो। ए बिचे गोरखपुर आयकरे लगे के जिलन में कई जगहों पर आज दिन में हल्का है बरखा भइल। सतही कुछ देर घाम निकरल आ फिर आसमान में बदरो छा गए। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
0: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम, बतासा बहन आपके भी राम राम।
1: राम राम जीरा बहन। देखें हम लोगों ने अपने पंचेती में शामिल हो गई लीजा, और देखें पंचेती में शामिल होते बातचीत शुरू होला अपने हाल चाल से, तो बतावे कुछ अपन हाल चाल और अपने गांव जवार के कुछ हाल चाल।
0: देखा हाल चाल के अगर बात करते हैं तो बरखा बुन्नी में हाल चाल ये बा कि कभो माने बरखा होए लगाता, कभो उमस होए लगाता, और कभो माने कहल गल कि पसीना निकले लगाता।
1: एकदम सही बात कहत हो जीरा बहिन। देखा ये मौसम के उतार चढ़ाव ना सबसे पहले स्वास्थ्य के ही प्रभावित करला।
0: बिल्कुल।
1: और देखा ऐसे निपटे के खातिर ना बस हम लोगन के पास एक ही रास्ता बा कि अपन खान पान के दुरुस्त रखल जाए, अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे वाली जो आहार होला मोटा अनाज होला ओके शामिल करत रहल जाए, और पर्यावरण के साफ सुथरा रखल जाए ताकि वो जब बढ़िया रही साफ सुथरा रही तो हम लोगन सुरक्षित रह सकेला।
0: बिल्कुल सही बात कहा तो। और देखा जब बात बरखा बूंदी का होता तो उनमें देखा जौन वर्षा के माने कल गले कि जौन जल हमन के माने संरक्षण करे के चाहिए, कहे मतलब कि जौन पानी ये समय अगर बरसा था ओके व्यर्थ ना बहावे और जमीन के अंदर तक जैसे ही पानी पहुंचाला था देखा एक असरदार माने तकनीक होला।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे देखा अपन जो भू जल हो देखा पुनः भराला और जल संकट से राहत और पानी में देखा शुद्धता भी मिलेला।
1: बिल्कुल जीरा बहन। देखा भाई हम लोग ना फोटो खिंचोली जा 12 जुलाई के भी तमाम पौधरोपण भेल, एक पेड़ माँ के नाम तब फिर फोटो लगवाओ के लोग व्हाट्सएप पर मतलब सोशल मीडिया पर डाल डाल के लोग अपन फोटो के साथ पौधा के साथ खिंचवावत बा। तो देखा ये बात तो ठीक बा कि हम अपन चाहे फेसबुक पर चाहे कहीं भी सोशल मीडिया पर लगा करके दिखावते कि हम पौधा लगौली।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हम सार्थक रूप में अगर के चाहते कि जोन जल स्तर जमीन के बढ़े तो जोन पौध रोपण हम लोगन करत है तो खाली ओके लगावल जरूरी नहीं बा, ओके बचावल भी ओकर देखभाल भी। जैसे छोटवार बच्चन के हम लोग देखभाल करी ला ना भाई, देखा वो अपने से तो खा पी नहीं सकल तो जब तक वो अपने हाथे गोड़े तैयार ना होला तब तक हर महतारी बाप के फर्ज होला कि उनके समय से नहवाना धोवाना। तो उहे असर बा अपने पौधा के कि भाई जब तक छोट बा तब तक देखा मतलब बकरी छेरी भी चढ़ सकेली गैया भी चढ़ सकेला, तो तब तक उनके देखभाल करल जाए जब तक कि मतलब उसे ऊपर ना हो जाए बड़ ना हो जाए
0: थोड़ा मजबूत ना हो जाए। का मतलब समझत इला कि अगर उके लगैले हिला तो ओकर देखा हम लोग जब तक माने देखभाल करके जैसे कलुओ बड़ हुए अगर उके हम लोग बड़ा ना करबला तो आगे जाके हम लोगन के माने जोन पर्यावरण माने जोन बल माने बन बन के बात करे
1: जंगल बा बन बा
0: जंगल बा चाहे जमीन बा अगर ओके हम लोगन के उपजाऊ करेगी है तो सबसे ज्यादा पेड़ लगाना बहुत जरूरी है जैसा आप कहलिन, और पेड़ ऐसा लगावे जो छाया भी दे और फल भी दे
1: जीरा
0: और पानी के कटाव के भी रोके।
1: बिल्कुल बात तो हर सही बात। देखा पौधा ना खाली छाया ही देला बल्कि समस्त पृथ्वी पर जीव जंतु पर एक एहसान बा एक तरह से, चाहे हम जन खुद मनुष्य रूपी जन्म ले ले ही जाए यहाँ धरती पर मानव रूप के ले ले जाए अपने यहाँ। तो देखा हम लोगन अपने आप के मेजबान समझे जाए और जन मेहमान समझल जाए और प्रकृति जोन है वो मेजबान है, कहे कि वो रह जाये हम लोगन का अस्तित्व वही से बा ओसे हम लोगन का अस्तित्व जुड़ल बा, अगर उहे नहीं रही तो हम लोगन का अस्तित्व बिल्कुल कुछ नहीं बा। तो देखा चाहे एक पेड़ माँ के नाम लगावा चाहे जन्म दिन पर या फिर शादी के साल पर उपहार स्वरूप पौधा भेंट करा तो ओके ईमानदारी से सत्य निष्ठा से ओके हम लोग करल जाए कि नहीं अगर हम लेते ही पौधा या फिर रोपित करते तो एक हम संरक्षण के भी जिम्मेदारी लेते। और देखा ये जब अपन धरती माई के हेरा पे मतलब कह जाए कि हरियाली के चादर बिछल रहला जीरा बहन तो देखे में कितना अच्छा लगेला, और ऐसे जैसे को कह लो ना कि छाया मिलला।
0: बिल्कुल।
1: छाया के साथ साथ बहुत सारा ऐसा बा कि जो उनकी गिनती नहीं बा जैसे कि फल फूल लकड़ी जड़ी बूटी ऑक्सीजन और कहल जाला ना कि एक पेड़ जन्मा के 10 पुत्र के बराबर होला।
0: बिल्कुल।
1: तो देखा हम लोगन अगर एक पौधा के लगा करके ओके संरक्षित होके बचा दे हली तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाला कि हम के कितना पीढ़ी तक तार दही।
0: और आपके बता नहीं बता सबिन कि ये मौसम में देखा जैसे हम लोगन के जून के महीना में गड्ढा खोदाई डल, अब जैसे ये बरखा बुन्नी शुरू हो गया तो ऐसने में अगर पेड़ लगावत तो वो पेड़ देखा अच्छे से पकड़ लेला
1: पानी
0: और
1: देवे के कम से कम उसे हम लोगों
0: हाँ
1: के छुटकारा मिल जाए
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और बस समय समय पे निराई गुड़ाई करत रहे के बाद। और सबसे जरूरी बात जीरा बहन की जैसे की भल की भूजल में सुधार कैसे होला वर्षा के देखा कहाला ना कि जहाँ जंगल बा वन बा या फिर जहाँ हरियाली बा ये देखा ये पेड़ पालो ही अपन बादल बुलावे ले और बरखा करे ले।
0: बिल्कुल।
1: तो जब बादल बुला करके बरखा करत हूँ तो पानी का संरक्षण करे के खातिर सबसे और महत्वपूर्ण तरीका आसान तरीका बा कि पेड़ का जो जड़ होला
0: हाँ।
1: देखा माटी का कटान के रोकेला
0: बिल्कुल।
1: और जब माटी का कटान रुकेला तो निश्चित तौर पे पानी का वहाँ पे अस्तर जनबा की नीचे जाई। जब माटी बही ना ही है और बही ना ही पानी तो भाई जल जनबा की तुरंत संरक्षित हो ना
0: बिल्कुल।
1: कल जलना कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी
0: खेत में
1: खेत में। तो हम लोगन के छोट छोट बात बा और अगर हम लोगन जैसे खेते पर मेड़बंदी बना के ताल पोखरा का साफ सफाई कर दिया जाए और मेड़े पर पेड़ लगा करके हम लोगन अगर कहल जाए कि मेड़बंदी कर लिया जाए तो वर्षा का जल जौन बाना देखे ओके बचावल जा सकेला और साथ ही साथ बढ़ावल भी जा सकेला। और देखा ये वर्षा का जौन जल होला ये संग्रह करे का अत्यंत प्रभावी आवश्यक प्रक्रिया है जेकरा माध्यम से बारिश का पानी के व्यर्थ बह से बचावल जा सकेला और साल भर का जौन पानी का किल्लत कभी कभी झेले के पड़ जाला ओसे छुटकारा मिल जाये जीरा बहन। और देखा एक अलावा भी कई तरीका बा वर्षा का पानी के संरक्षित कर जा सकेला जैसे कि घर चाहे अपन इमारत का छत बा ना जब वर्षा का जल गिरेला तो पाइप के माध्यम से जमीन में बनल जो सोखता या फिर गड्ढा जो भी अगर जे बनवले बा तो भाई सोना ही चांदी बा ओकरे खातिर के
0: बिल्कुल।
1: जे ना बनवले बा तो ऐसा बनवावे कि छत का या फिर जोन घर का छत पर पानी गिरल बा उ पाइप के माध्यम से कोनो गड्ढा में कोनो पोखरा में बहे
0: का मतलब ये है कि माने फिजूल में बह ना जाए।
1: हाँ फिजूल में ना बहे टैंक के माध्यम से ओके उतारल जा सकेला। और दूसरा तरीका ये बा कि सोखता या फिर गड्ढा या फिर ट्रेंच माने खुला मैदान जहाँ सड़क के किनारे में जल भराव वाला क्षेत्र कभी कभी होला ना कि गाड़ी घोड़ा चलावा तो सड़के पे कबो गड्ढा वाला तो वहां तो नहीं बनावल जा सकेला लेकिन सड़क के बगल में गड्ढा या सोखता जैसा बना करके ऊपर जो बा की कंक्रीट चाहे रेत भर देला से पानी जो बा की आसानी से जमीन के अंदर धीरे धीरे सोखत चल जाला और जल के स्तर जो बा उ बढ़ेला
0: बिल्कुल।
1: और एकरे साथ साथ देखा भाई एकर लाभ का बा एक तो भाई पूछे के नहीं बा कहे कि देखा जल का स्तर में वृद्धि हुई पानी की शुद्धता मतलब बनी एकरे साथ साथ देखा जो बाढ़ हो जाला ना जैसे पानी के बहाव एक तरफ कहीं हो रहा बा तो बाढ़ का स्थिति पैदा हो जाला तो देखा बाढ़ के स्थिति से रोकथाम हुई और बिजली और धन के भी बचत हुई और ऊपरी सतह पर पानी इकट्ठा से देखा मच्छर पनपेला तो जब कंक्रीट और रेत बिछल रही ना जीरा बहन तो धीरे धीरे पानी रिस करके ओकरे माध्यम से जल स्तर के वृद्धि हुई। तो जब इतना फायदा बा इतना छोट छोट बात बा और एक बस थोड़ा सा दिमाग और जुगत लगावे की जरूरत बा जीरा बहन तो बस देखा इतना करल जाए तो निश्चित रूप से जल का संचयन कैल जा सकेला। और देखा फिलहाल हम लोगन अपन तो बात कहीबे कैली लेकिन आज के पंचायती में हम लोगन और भी जानकारी ऐसे ही जुड़ल शामिल कैले है जा तो कुछ एक पर भी चर्चा हो जाए
0: बिल्कुल चर्चा हो के चाहिए। तो आज जानकारी का बा आपके पास
1: हमारे पास देखा जानकारी ना अपने पंच भैया लोगन के कार्यक्रम में अपने पंचायती में शामिल कई जानकारी बा जैसे कि देखा स्थानीय स्तर पर वर्षा जल संचयन का प्रयास जरूरी मतलब हर केहू के प्रयास कल जरूरी बा जोन की बारे में देखा ब्रिज किशोर यादव जोन की जागरूक ग्रामीण हवा उनसे जगत नारायण भैया की बातचीत बा साथ हम तो कहते ना बारी बारी से जानकारी और मन फेर हो ताकि अपन पंच भैया लोगन के मन में एक संशय बनल रहे कि आगे का हुई आगे का हुई तो हम तो कहते जानकारी के सुनल जाए लेकिन उससे पहले कुछ संदेश बा
0: चला सुन
1: ओके सुन ले जाए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दुधी ब्लॉक के टेढ़ा गांव में श्री ब्रिज किशोर यादव जी से मुलाकात हो रही है। आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं जो कि गांव के लोगों को अक्सर करके जागरूक किए रहते हैं हर क्षेत्र में। समय

0: और क्या आप चिंतन करते हैं जल संरक्षण के बारे में, आपसे बातचीत होगी। ब्रिज किशोर यादव जी, आपको आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये जल संरक्षण की बात आती है, सर्वप्रथम तो हम लोग जल के महत्व को जानें कि कितना ज़रूरत है प्रत्येक व्यक्ति के, एक जीव के शरीर में जो है कि जल की मात्रा कितना अधिक रहता है। जल का अभाव हो जाए तो क्या हो सकता है, तो आपका क्या ख्याल है जल संरक्षण के बारे में?
1: जी नमस्कार श्रोताओं, आज जैसा कि जल संरक्षण, जल के बिना जीवन असंभव है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। व्यक्ति को अगर पानी न मिले तो जीवित नहीं रह सकता, और हमारे शरीर में पानी की बहुमूल्य योगदान है। इसलिए हम सबों को पानी के प्रति चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज जल का जो संकट गहराता जा रहा है, यह सिर्फ देन है तो मानव का।
0: जी,
1: अगर मानव नहीं सोचा तो एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कि वह पानी बिन मछली की तरह तड़पना शुरू कर देगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जैसे हम पेड़ पौधों को लगाने में जितना उत्सुकता नहीं दिखाते, उतना काटने में
0: जी
1: दिखाते हैं, जो कि यह नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को पौधे अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हरे पौधे हमारे जीवन के दाता हैं। उनके जीवन जीवन जीव में जुड़ा है वन।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसीलिए बना हुआ है जीवन। इसलिए जीवन में वन का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए पेड़ पौधे अवश्य लगाएं।
0: वन है तब जीव है।
1: जी जी
0: बिल्कुल।
1: और आज हर लोग अपने सुख सुविधा के नशे में दिन प्रतिदिन जैसे बोरिंग कराते चले जा रहे हैं, 300 फीट नीचे से पानी को निकालने का काम कर रहे हैं।
0: जी,
1: जिसका यह भी एक कारण है, जो जल स्तर नीचे चला जा रहा है। और प्रकृति ने भी थोड़ा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार, आप हम देख रहे हैं कि बारिश की स्थिति, बेमौसम बारिश होना किसानों के लिए समय समय पर, जैसे इस साल तो ऐसी स्थिति आ गई कि भुखमरी के कगार पर किसान है।
0: जी,
1: उनके झोली में जो कुछ भी था वो अपने खेतों में फेंक कर और घूमता फिर रहा है कि कब प्रकृति, कब ईश्वर हमें पानी दे देते।
0: अच्छा, बहुत पुराने पुराने कुएं हैं, देखते हैं कि उसमें पानी का बिल्कुल अभाव हो गया है।
1: जी,
0: तो कहीं ये कहीं बोर का ही तो नहीं ऐसा?
1: जी जी जी, हर एक किलोमीटर में लगभग हम देखते हैं, मेरा अनुभव है कि लगभग मेरे गांव में 1 किलोमीटर में कम से कम 50 बोरिंग हो गई, हर 200-300 मीटर में। तो 300 फीट से नीचे से पानी आ रहा है, तो 30 फीट ऊपर होने कोई संभावना ही नहीं बनता।
0: बिल्कुल।
1: और इस बार तो जल स्तर कुएं बावली में ना के बराबर एकदम ही पानी ऊपर नहीं आया है, जो कारण, जिसका कारण मनुष्य है। और मनुष्य इस बारे में तनिक भी नहीं सोचता है, अब सिर्फ स्वार्थ में अपना काम करते चले आ रहे हैं, और जिसका नतीजा हर जीवों को
0: भुगतना पड़ेगा,
1: चाहे जीव जानवर हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो। अभी मनुष्य तो अपना व्यवस्था कर ले रहा, पशु पक्षियों के बारे में भी उनको सोचना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और अब जहाँ जल स्तर की बात है, जल रहेगा ही नहीं।
1: जी जी,
0: तो चिंता या चिंतन कुछ करके संभव नहीं है।
1: जी,
0: तो जल समाप्त न हो उससे पहले ही चेतने की जरूरत है।
1: जी जी, चेतने की जरूरत है।
0: कहा भी तो गया, केला तब हिन चेतिया जब ढिंग लागे बेरी, अब के चेते क्या भया जब काटिन लेना गेरी। जब जल नष्ट हो जाए
1: जी जी,
0: तो पता चला कि हम चेतना शुरू किए।
1: जी,
0: तो उस समय अब तत्काल जब व्यक्ति प्यासा रहे तो लगे कुआं खोदे।
1: जी,
0: तो कहां से पानी मिल सकता है?
1: नहीं, समय रहते मनुष्य को सोचना पड़ेगा।
0: अब पर्यावरण इतना दूषित हो जाएगा, पेड़ पौधे सब, चूंकि कहीं न कहीं से आप लोग ही कहते हैं, तो तमाम लोग के वार्ता से भी जाना जाता है कि मौसम बनाने में सहभागिता जो है कि पेड़ पौधों की होती है, जिसे बरसात होती
1: जी,
0: है। और आज जो है कि पेड़ पौधों के सर्वथा अभाव सा प्रतीत होने लग रहा है।
1: जी जी,
0: जहे नहीं तहे जो है कि सुबह होते ही लोग कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर पहुंच जाते हैं।
1: जी,
0: नेनुआ चढ़ाने के लिए हरा हरा पेड़ काट के झांकी ले आ रहे हैं।
1: जी जी,
0: हाँ, अब तो बरसात कहाँ कल्पना की
1: जी, बरसात कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो गया है।
0: जी जी,
1: ऐसे तो गांवों में भी कुछ हद तक आप देखे होंगे कोरोना काल में, कि जहाँ आबादी क्षेत्र हैं जैसे शहरों में,
0: जी,
1: वहाँ ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हुई थी।
0: हाँ, हाँ,
1: और लोग मरने का सिलसिला जारी रहता था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कम से कम गाँवों में यह नहीं देखा गया, जिसका देन है पेड़ पौधा, शुद्ध हवा का। कहा जाता है कि सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा।
0: जी जी।

0: ये पेड़ों का ही तो देन है।
1: अच्छा, पानी की उपयोगिता जो है जल की, अब देखें नहाने से लेकर पीने धोने मवेशियों के लिए,
0: जी
1: इस
0: जी
1: पर लोगों की दृष्टि जा ही नहीं पा रही है संभवतः,
0: नहीं, मनुष्य को यह
1: है
0: देना देखना चाहिए, अगर नल खुला है बेवजह का बह रहा है तो कम से कम उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद रिसना भी एक पानी के लिए,
1: हाँ
0: हमारे लिए
1: बिल्कुल
0: घातक हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए पानी की बचाव और पानी का महत्व मनुष्य को सोचना पड़ेगा, और समय रहते सोचना पड़ेगा।
1: हाँ
0: अगर समय निकल जाएगा तो फिर वही
1: मुश्किल
0: हाल
1: है।
0: हो, जब
1: हाँ
0: चिड़िया चुग गई खेत तो बाद
1: बिल्कुल
0: में
1: बिल्कुल, बरसने से का फायदा।
0: जी, तो यह हाल है। इसलिए पानी का संरक्षण हम सभी को मिलजुल कर,
1: तो पहला कारण तो समझ में आया कि जैसे ये कुएं के पानी से अस्पष्ट हो जा रहा है कि जो बोर कर दे रहे हैं नीचे तक,
0: जी
1: तो जल स्तर नीचे चला जा रहा
0: जी
1: है। साथ साथ जो अभी जैसे प्रकृति में बरसात होनी चाहिए,
0: जी
1: बरसात होने की वजह से आदमी खेती करता था
0: जी
1: और खेती करता भी है,
0: जी
1: और अगर वो सब बोर के माध्यम से पानी निकाल करके अगर क्यारी में डालकर धान उत्पादन किया जाए
0: जी
1: तो लगता है कि बहुत सारा अधिक पानी निकलेगा,
0: जी जी बहुत बड़ा संकट आएगा आने
1: है
0: वाले समय
1: उससे
0: में।
1: भी जल का स्रोत जो है कि नष्ट होगा।
0: जी,
1: और अक्सर करके झरना देखता है आदमी की पेड़ पालों की वजह से या जैसे भी पहाड़ी से गिरता है,
0: जी
1: तो उससे देख करके भी समझना चाहिए कि इतना ऊंचाई पर कहाँ से पानी आ जाएगा, कहीं
0: जी
1: न कहीं से पेड़ पौधों
0: पेड़
1: के
0: पौधों का
1: जड़
0: उसमें बहुत बड़ा योगदान है,
1: हाँ
0: बिना
1: जड़
0: पेड़ पौधों के
1: हाँ
0: पानी हमें मिल ही नहीं
1: तो
0: सकता।
1: उसके रिसाव से ये सब होता है
0: जी
1: और उसी का जो है कि दोहन भी हो रहा है।
0: जी
1: तो ये चूंकि रेडियो के माध्यम से पूरे इलाके के लोग सुन रहे हैं,
0: जी जी
1: जहाँ तक बात की जाए कि पूरे जनपद के,
0: जी
1: और हम लोग के आसपास पड़ोस में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ
0: जी
1: के लोग भी, बिहार के भी कुछ लोग जो है कि रेडियो सुनते हैं हम लोग के,
0: जी जी
1: आकाशवाणी ओबरा को।
0: जी
1: तो ऐसे श्रोता लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जल संरक्षण
0: ऐसे
1: के बारे में?
0: श्रोताओं को मैं कहूँगा कि बहुत निचले स्तर तक बोरिंग न किए जाएं,
1: जी
0: और एक अभियान चलाकर हरे पेड़ पौधों को न काटा जाए बल्कि लगाने की उन्हें प्रेरणा दी जाए,
1: जी जी जी
0: ताकि हम सबका जीवन सुरक्षित हो सके। समय रहते अगर हम नहीं चिंतन करते हैं, पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं उनको काटते जाएंगे, तो
1: जी
0: आने वाले जीवन में हमारा बहुत बड़ा घातक हो जाएगा। इसलिए पेड़ पौधे लगाएं और व्यर्थ के पानी न बहाएं,
1: जी अगर बरसात भी हो रहा है तो कुछ मेड़बंदी वगैरह
0: मेड़बंदी
1: भी।
0: बांध जगह जगह पर उन पानी को रोक दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: ताकि हमारा जो जल स्तर है कुछ बना रहे और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं यही लोगों से अनुरोध करूंगा कि हरे पेड़ पौधे न काटें और हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए।
1: अच्छा, बहुत सारे जैसे पहले जो कहीं से दमाड़ फूटता था,
0: जी जी
1: उबका निकलते थे,
0: जी
1: आज वो भी जो है कि समाप्त होते चले जा
0: समाप्त,
1: रहे हैं।
0: जैसे जब हम मैं अपने खेतों पानी को रोक नहीं पा रहे हैं, जगह जगह पर बंधी है, वहां पर उस बंधी को भी खोलकर अपना एक अपना व्यवसाय का धंधा या फसल उगाने के लालच, लोभ लालच में पानी निकाल दे रहे हैं,
1: जी
0: फिर पानी का स्तर नीचे चला गया है, तो दबाड़ फूटने पानी निकलने कोई
1: सवाल ही नहीं
0: अवसर ही
1: है।
0: नहीं बनता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। इसलिए जगह जगह पर लोगों को पानी रोकना चाहिए, और ऐसे ही भगवान जी तो पानी दे ही नहीं रहे हैं, और वो उल्टा
1: हाँ
0: हम
1: हाँ
0: आप
1: हाँ हाँ
0: लगे हुए हैं उसका दोहन करना,
1: दोहन करना,
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: नुकसान तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना।
1: अच्छा, एक बार जो है कि आदमी अनाज के बगैर तो कुछ दिन जी भी सकता है,
0: जी जी जी
1: लेकिन जहाँ पानी की बात आए
0: जी
1: तो तुरंत दम घुट सकता है,
0: जी
1: गला सूख जाएगा।
0: जी पानी के
1: हैं
0: बिना जीवन संभव
1: कल्पना
0: नहीं
1: किया
0: है।
1: जाए कि कहीं पानी अगर नहीं है
0: जी
1: तो जीवन बिल्कुल नहीं है,
0: नहीं है।
1: और सब तब हम लोग का जो है कि जो हकड़ई है
0: जी
1: जाकर के जंगल से काटना और पानी के जो है कि दुरुपयोग करना।
0: जी जी
1: कभी कभार देखता है कि आदमी जब कि हाथ मुंह धोना है, पैर धोना है,
0: जी
1: तो मोटर चालू कर दिया,
0: जी जी
1: उससे अनावश्यक तमाम पानी
0: अनावश्यक
1: जो है
0: अनावश्यक पानी के खर्चे
1: इस
0: हैं,
1: सबसे भी बचत
0: ये सबसे
1: करना है।
0: बचत करना है पानी
1: और
0: का।
1: जहाँ टूटी की बात है, टूटी खोल करके उससे भी बहुत
0: पानी
1: जो है कि
0: अनावश्यक पानी बहाव हो रहा है, उसको हर लोगों का कर्तव्य बनता है कि पानी ना बहाएं, व्यर्थ ना बहाएं, और उसका बचाव करें ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके।
1: तो आप थे श्री ब्रिजकिशोर यादव जी टेढ़ा से, जो दुधी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आपसे बातचीत हो रही थी जल संरक्षण के बारे में। निश्चित रूप से अगर जल का अभाव हो जाए तो मानव जीवन तो क्या, जितने भी जीव जंतु हैं, जल से पेड़ या पेड़ से जीव जंतु, तमाम एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। जल ही जीवन का
0: जीवन का
1: आधार है,
0: आधार।
1: चाहे जो भी जीव जंतु हैं। इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आदिवासी विकास निधि।
1: तजीरा बहन,
2: हाँ बता।
1: देखा बता। संदेश सुन लीजा और उसे पहले जो जानकारी हम लोग सुन लीजा कि स्थानीय स्तर पर वर्षा जल संचयन का प्रयास जरूरी, और ये विषय पर बृज किशोर यादव जो उनकी जागरूक ग्रामीण रलन है उनसे भोला भैया के फरिया फरिया के बातचीत भल कितना बढ़िया लगल। सही बात बा, जैसे बृज किशोर भैया जागरूक बा वैसे ही हम सबके भी जागरूक रह जरूरी बा, और जागरूकता ही कहल जाए कि प्रयास का एगो सफलता का पहला कदम है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इतना बढ़िया जानकारी मिलल तो धन्यवाद भी बनेला, और धन्यवाद स्वरूप का कहत हो।
2: धन्यवाद देखा मनोज तिवारी चौबे भैया का गावल जोन।
1: मनोज तिवारी के गीत बड़ी पसंद है आपके, देखा मनोज कुमार चौबे
2: चौबे बोल ली है।
1: अच्छा देखा मैंने बा जीरा बहन अपन पंच भैया लोगन सुनियत बताइए जीरा बहन कितना तड़का लगावत है। अच्छा। तो देखा मनोज कुमार चौबे भैया के एगो पूर्वी बात पहले चले मन फिर सुन के मन फरहर करल जाए।
3: उड़ती चिरैया।

0: आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत नवाड के तत्वाधान में क्रियान्वयन डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स अर्थात
1: देखा हो जीरा बहन, देखा मन फिर सुनते इतना मन फरहर अपने भोला भैया के हो गए ना कि सीधे बातचीतें शुरू कर देना। भोला भैया भी जब झोरा उठावा ना तो एकदम सोचो ना कि पहले हम ही आगे रही, लेकिन जहाँ जीरा बतासा रहे तो उन्हों के मौका मिले के चाहिए ना। तो देखा जब बात आई गल है अपन भोला भैया के, तो देखा भोला भैया जगह जगह पे पहुंच जाला। और फिलहाल देखा कृषि आधारित बागवानी से आय के फायदा जहाँ लेबक हो वहाँ और आगे हो जाना। तो अरविंद कुमार तिवारी जो उनकी प्रगतिशील किसान हुआ उनसे भोला भैया बातचीत कैले हुआ। लेकिन एक चीज कहब जीरा बहन की, देखा अपने खेती बारी में ना जन कृषि यंत्र होला उसे देखा अपन खेती बारी के काम बड़ा सहज हो जाला, बड़ा आराम हो जाला।
2: बतासा बहन कहे से कि कृषि यंत्र देखा समय के जरूरत भी हो गला और जेमे समय का भी बचत होला और काम भी देखा इससे ज्यादा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और इनमें जो मुख्य यंत्र हो आपका ट्रैक्टर हो गल, रोटावेटर हो गल और सीड ड्रिल जो शामिल होला इनमें देखा समय भी कम लगेला, मेहनत भी कम लगेला और कि उत्पादन भी जो ना कि अगर हम लोगन के चाहिए तो में बढ़िया मिलेला। और दूसरी चीज अगर इस मशीन के उपयोग से हम लोग बीज की बुआई करत ही ला तो उससे जो फसल के कटाई का भी जो समय होला वो भी देखा है कि इस्तेमाल करे से बहुत कम हो जाला।
1: एकदम सही कहलू है जीरा बहन। देखा आधुनिक कृषि यंत्र जन होला ना एक देखा अपन खेती में उपयोग कैला से किसानी में बड़ा आसान हो जाला और मतलब सस्ता भी रहेला और लाभदायक भी रहेला। ऐसे देखा समय और मेहनत के बचत दोनों होला और साथ ही साथ देखा पैदावार में भी वृद्धि होला।
2: एकदम
1: जैसे जौन भी अपन कृषि यंत्र हैरो रोटावेटर है जैसे आप कहली है और सीड ड्रिल मशीन है पावर टिलर है कंबाइन हार्वेस्टर है जैसे ये सब यंत्र के प्रयोग कैला से ना चाहे जुताई के काम हो बुआई के काम हो कटाई हो मतलब देखा समय का बड़ा बचत होला।
2: एकदम सही बात है।
1: अब देखा जैसे रोटावेटर के अगर बात करल जाए जो भी अपन इस समय ये मशीन हर घर हर गांव में देखल जाला तो ये देखा खेत के माटी के गहराई से जोत के ओके भुरभुरी बनावेला समतल बना देला जैसे कि जैसे हर का काम करेला। अब देखा हर से जब बैलन से जुतात रहल पहले अब जैसे पहले सुविधा समय रहल वो हिसाब से रहल कि मतलब समय भी लागे और मेहनत भी लागे और रोटावेटर देखा मतलब दिन भर में कितना खेत जोत देला तो ऐसे समय की बचत होला।
2: समय का भी बचत होला रोटावेटर से और डीजल दोनों का देखा बचत होला। और जहाँ पे सीड ड्रिल का बात होला तो एक मदद से देखा किसान भैया लोग कई तय रहला कि गहराई और सही दूरी पे एक साथ कई कतार में जोन बीज की बुआई होला और खाद डाले का जोन काम करेला उससे भी देखा बीज के भी बचत होला।
1: बीज के बचत होला साथे साथे खाद और बीज जोन बाकी एक के साथे गहराई में पड़ेला जैसे फसल का पैदावार बढ़िया होला।
2: और पावर टीलर जोन देखा छोटे खेत हो चाहे बागवानी हो अगर एक माने कल कल के हल्का यंत्र जोन कहल जाला जैसे देखा जुताई निराई गुड़ाई और भूमि के समतल करे का भी काम करे
1: एकदम एक कहल जाए कि अपने खेती में मशीन ये वरदान के रूप में बात कौनो मतलब

0: एक कोनो अतिशयोक्ति ना होई। और
1: हाँ
0: देखा कंबाइन हार्वेस्टर के अगर बात करल जाए तो फसल के जोन कटाई मड़ाई और
1: हाँ
0: दाना निकाले का काम देखा ही अकेले मशीन मिनटों में कर देला, मना कई मजदूर का जोन बाकी बचत हो जाला और पैसा
1: हाँ
0: का बचत हो जाला, समय का
1: बिल्कुल
0: बचत हो जाला। और भाई देखा स्मार्ट स्प्रेयर और ड्रोन के जोन आजकल तो देखा ड्रोन मशीन आ गल बा,
1: हाँ
0: जोने के वजह से कम समय में देखा कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव बहुत कम समय में हो जाला और सटीक एकदम मतलब पौधा पर हर
1: हाँ
0: पौधा पर समान रूप से पड़ेला। और
1: हाँ
0: साथे साथ निरीक्षण हो जाला अपने मशीन से कि मतलब कोने पौधा पे कहीं ज्यादा कहीं मतलब कोने बीमारी तो ना लग रहा, कई तरह की जानकारी मिल जाला
1: अब
0: एकदम से।
1: बिल्कुल। और देखा जो उत्पादन के जो वृद्धि है वो भी देखा है इमे कल गल कि सही समय पे अगर सटीक बुआई हमन के जुताई करत इला तो फसल तो अच्छी मिलबा करी। और जब फसल अच्छी मिली तो देखा हम लोग अगर बाजार ले जाती ला तो हम लोगन के जो मुनाफा है वो देखा बढ़िया मिली। और मुनाफा के बाद के लिए तो आगे भी बात जैसे अपने माने कल गल की एक आँख घरे पे और एक आँख बाजारी पे होला तो
0: बिल्कुल
1: बाजारी पे जोन माने बाजार भाव ओके बताए जोन पुनवासी चौहान भैया भेजले हुआ।
0: बाकी देखा बताई है उसे पहले जो कृषि आधारित बागवानी से आय में वृद्धि के तरीका से अरविंद कुमार तिवारी भैया जो उनकी प्रगतिशील किसान हमन
1: हाँ
0: अब जगत नारायण माने भोला भैया के कहल जाए, भैया अपन मुंह पर से अंगुरी हटावा और बातचीत शुरू करा।
1: चला सुनल जाए।
2: आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत नवार्ड के तत्वाधान में क्रियान्वयन डेवलपमेंट अल्टरनेटिव अर्थात बीए के नाम से भी जानल जाला कि संस्था के द्वारा 54 ब्लॉक में आदिवासी किसानन के आजीविका के खातिर कृषि आधारित बागवानी के कार्यक्रम चल रहा है। और यह कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में घूम घूम करके सहयोग करे वाला अरविंद कुमार तिवारी जी से मुलाकात हो रहा बा। अब केह तरीके जवन उबड़खाबड़ जमीन है या पठार है या जो कोई उपयोग नहीं है ओके उपयोगिता में कैसे लावल जा सकल है, एक संदर्भ में का कुछ कर रहा हूँ। और देखल भी जात बा भैया लोग की पर्यावरण असंतुलित बा, जने में कि जब नहीं तब बरसात, जब नहीं तब मौसम में परिवर्तन, जिस समय पानी बरसे चाहिए उस समय पानी नहीं बरसत है, गर्मी कब पड़े चाहिए ओकर भी कोई समय निर्धारित नहीं हो। पहले आदमी मौसम के वैज्ञानिक स्वयं रहे, किसान लोग रहन, लेकिन आज मौसम में कब परिवर्तन हो जाता है कब का हो एक बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अरविंद कुमार तिवारी जी अपन अंचल के रहे के वजह से यह ग्रामीण क्षेत्र में का स्थिति हो, कैसे एकर संतुलन बनावल जा सके, किस तरीके कृषि में विकास हो सके, इस सब के संदर्भ में का कुछ करत हमन आपके मुखार बिंदु से ही सुनल जाए। तो अरविंद कुमार तिवारी जी, ये हम लोग के क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र तो ही है और ये में जो बाकी हम लोग के किसान भैया लोग चाहे जो भी आदिवासी भैया लोग हमन उतना मन भी नहीं लगावे खेती किसानी में
3: नहीं हमन।
2: और एकर भी कारण है कि जो बाकी आय के कमी
3: आय के
2: पिछड़ापन के कारण है, तो ये लोग के जागरूक
3: बा।
2: कैसे कर देवल जाए, जब मान लो केहू बचवा लोगन की अगर बात करी जाए छोटे से बात तो उन पढ़ाई लिखाई चाह रहा, अगर केहू लड़का की एक प्रश्न याद करे की आदत पड़ गई तो दूसरा प्रश्न याद करल चाहला। एक किसान के अगर थोड़ा सा खेती कैला से बढ़िया फसल उत्पन्न हो गई तो ज्यादा दूर तक खेती करे की इच्छा जागल,
3: ज्यादा बढ़ा के काम करल चाह।
2: तो आप एक क्षेत्र में का कुछ करत हूँ?
3: इस क्षेत्र में हमके आदिवासियन भाइयन के विकास के लिए हम लोग जो उनके डेढ़ बीघा जमीन में आम्रपाली आम और 60 आम और अमरूद 35 अमरूद डेढ़ बीघा जमीन में हम लोग लगवाई ले।
1: अच्छा अच्छा।
3: और उगर दूरी रहा ले 6-6 मीटर।
1: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, किनारे से हम 3-3 मीटर छोड़वा के और बीच बीच में पौधा से पौधा 6-6 मीटर के दूरी पे लगवाई ले।
1: अच्छा अच्छा।
3: एक के बाद ओहमे जोन बा हम लोग किनारे किनारे बारिश के समय में ही किसान भाईजन से जोन बा की सुरक्षा खाई खोदवा दही ले।
1: अच्छा जी।
3: बारिश के पानी जब वो सुरक्षा खाई में जमा हुई तो कुछ दिन तक पानी जमा हुई और ऐसे अंदर अंदर पौधा के नमी भी मिली
1: और
3: जल संरक्षण भी हुई। और वही में आदिवासी भाई लोगों से हम लोग बीच बीच में अगर उबड़ खाबड़ जमीन बा ऊंचा खाला तो हमें हम लोग मेड़बंदी भी दिवाई ले, ओकर कुछ पैसा भी देवल जाले।
1: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, उमे यह कि 30% किसान अपने से ओहन के मेहनत आना रहा ले और 70% हम सहयोग करी ले ओहन के।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: एक बार जोन बा की ओमे थाला बनावे के ओमे जोन बाकी पौधा में सुरक्षा करे के हम लोग बीच बीच में जाई ले उन लोग के बताई ले, इतना तो हो गए उनके मतलब कि पौधा लगावे के लिए एक पर्यावरण के लिए मेन होगल कि पर्यावरण संतुलन रही और धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण जो बाबू कम हुई।
4: जी जी जी।
3: लेकिन एक लिए हम लोग एक मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण के साथ साथ आजीविका भी एमे चले।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, तो आजीविका के लिए हम लोग ये करी ले कि पौधा तो 6-6 मीटर दूरी पर है।
4: हाँ।
3: लेकिन 6-6 मीटर के बीच में का करी ले कि बारिश में ही पौधा लगे से पहले ही जुताई उताई करा दी ले।
4: अच्छा,
3: पौधा
4: अच्छा।
3: लगे के बाद तुरंत हमें सब्जी लगवा दी ले।
4: अच्छा,
3: अब सब्जी जब लगा ले तो बारिश में तो पानी चाहिए नहीं उनके।
4: हाँ, हाँ।
3: एक के बाद 3-4 महीना तक लोग सब्जी अपन निकली है 1.5 बीघा जमीन में।
4: अच्छा।
3: और सब्जी बेची है और कुछ पैसा कमा ली है।
4: अच्छा, वो पैसा उनकरे
3: है। उनकरे बा, पैसा सब उनकरे बा। एक के बाद कहा कि हम लोग सागौन दे ले जो किनारे किनारे सुरक्षा खाई खुदा ले 1.5 बीघा में।
4: हाँ, हाँ, हाँ,
3: हाँ। उसमें हम लोग 100-100 पेड़ सागौन के लगवाई ले।
4: अच्छा।
3: और उस सागौन के पेड़ जब 15-20 साल में तैयार हो जाए, 15-20 साल के बाद उस सागौन के पेड़ सब मतलब टोटल चीज उन्हीं के बा।
4: उन्हीं के बा।
3: हाँ।
4: आम फली तब
3: सब
4: अमरूद सागवान के पेड़ तैयार हो जाए फर्नीचर।
3: अब हम एक एक अलग अलग बागवानी नहीं लगाई ले। अब एक में कहा कि 1.5 बीघा जमीन 10 आदमी के रह ले, 10 आदमी के बीच में हम लोग जोन बा एक बोर भी कराई ले। आस पास अगर 10 बीघा जमीन बा, अरे 10 आदमी के 15 बीघा, तो 15 बीघा में हम लोग लगवाई ले और उनमें जो बाकी एक बोर करवा दे ले, समर सेबुल भी हमें डलवा दे ले सिंचाई के लिए। गरीब आदमी कहाँ से पानी।
4: हाँ, सही बात, सही
3: हम लोग सहयोग कर दे ले।
4: अच्छा।
3: एक बाद अगर लाइट बात अच्छी बात बा, लाइट जा रहा ले तो 3-4 टोला में मिला के एक जनरेटर की व्यवस्था, मोबाइल जनरेटर रह ले और वो जनरेटर एक हफ्ता ही टोला में, एक हफ्ता अगला टोला में जा जाके किसान ले जाके अपन मशीन चला के पानी पटावे ले। ये सब बात। दूसरी बात बारे में कि आम अमरूद पहले साल फल ले।
4: अच्छा।
3: लेकिन हम लोग क्या कर ले कि पौधा कमजोर हो जाए, ये वजह से ओके हटवा दे ले मजर के सब।
4: अच्छा।
3: निकलवा दे ले
4: मजर के निकलवा।
3: हाँ। और 3 साल के बाद आम फरे दे ले।
4: हाँ, हाँ, हाँ।
3: और अमरूद तो 1 साल के बाद अपन लेवन है लोग।
4: और
3: हमारे किसान लोग अभी बहुत लोग हमन इसे बसुधा उसुधा में कोटा गाँव के 25-25 हजार के अमरूद बेच ले हम सब।
4: अच्छा अच्छा।
3: 2015 में लगा रहा।
4: अच्छा।
3: उससे 1 साल के बाद से अमरूद सब 25-25 हजार के बेच ले हम। मतलब बहुत खुशी हुई लोग के कि हमारे जो जमीन में पैदावार नहीं होते रहा उस जमीन में हम अमरूद बेचे थे 15-15, 20-20 हजार, 25 हजार के। एक बाद हर महीना सब्जी से 5-6 हजार रूपए कमाते हैं और 1.5 बीघा जमीन में ही हर प्रकार के सब्जी लगवा दे।
4: सिंचाई के साधन भी हो गए।
3: उससे 2-3 चीज के फायदा बाटे। पहला फायदा बात कि उनका जो बाहर पलायन करत रहा है वो पलायन नहीं करता, अपन खेते में रह जी है। दूसरी बात डाला वाला प्रेशर बेल्ट है। अब प्रेशर बेल्ट में जी है वहाँ बारूद फूटल है, बोल्डर फूटल है, लोग विकलांग हो जी है, चोट लगल है,
4: धूल उड़ल है,
3: धूल उड़ल है, उससे भी उनका बचाव हो जाए कि अपन जमीन पर काम करी है, अपन 2 पैसा कमाई है। और दूसरी बात 10-12 किसान जब रहा है तो वहाँ पर एक बाउलिया भी खुदवा दे ले हम लोग, तालाब।
4: जी जी।
3: तालाब खुदवा के वहाँ के महिलन के समूह बना के महिला समिति के द्वारा तालाब को दे दे ले और हमें मछली पालन करा के महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ दे ले हम लोग। ये पुरुष लोग बागवानी में रह जी है और महिला लोग अपना मछली पालन कर रही है। बर्मी खाद गोबर जो रहा है कच्चा गोबर किसान ज्यादातर खेत में फेंक देवल है, तो कच्चा गोबर के खाद में इस्तेमाल करे के लिए हम लोग टेट्रा बेड उन लोग को दे के और बर्मी खाद बनवाई ले।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, बर्मी खाद बनवाई ले और बर्मी खाद के द्वारा खाद हम ही लोग उनसे 4 रुपया किलो खरीद ले।
4: अच्छा।
3: किसाने से
4: अच्छा,
3: किसान अच्छा, के गोबर किसान के मेहनत और किसान के द्वारा केचुआ खाद बर्मी खाद बनवा के।
4: हाँ, हाँ,
3: और उहे खाद उनका बागवानी में डलवाई ले। यूरिया DAP खेला होकर आगे।
4: हाँ, हाँ, कहे नहीं।
3: और बर्मी खाद के जो पानी निकल है पसेवा केचुआ के वो पसेवा पौधा पर सब्जी पर छिड़कवाई ले, ऐसे कि कीड़ा मकोड़ा उनमें नहीं लगाने। अंग्रेजी दवा में नुकसान करी शरीर
4: के
3: और शरीर के नुकसान भी नहीं कर ले। तो इसमें हम लोग जो है कि 54 ब्लॉक में 1500 किसान के साथ ही कार्यक्रम कर रहा है।
4: अच्छा अच्छा।
3: 1000 किसान के यहाँ बागवानी हम लोग लगवा दिले है और वहाँ पर कार्यक्रम चलत बा। 500 किसान के लिए और हम लोग कार्यक्रम इसमें चलावत है।
4: ये हमें जनबा की अगर किसान लोग ऐसे चाहे जुड़ल हमें तो और अधिक जुड़ सकल
3: ये निर्धारित बा। लेकिन अगर और किसान जुड़े चाहे नहीं तो वहन के हम पौधा फ्री में नहीं दे सकते।
4: अच्छा अच्छा।
3: पौधा मंगा सकी ले, पौधा उन लोग के हम लोग पैसा से दे सकी ले। अगर वहाँ से पैसा जहाँ से आवल है वहाँ से पैसा देवल जाले।
4: जी, जी जी जी।
3: तो और अगर किसान जुड़े चाहिए तो हमें हम लोग अलग से दूसर जाति के लिए है तो उन लोग पैसा अगर जमा करी है उनके पौधा हम दे सकी ले, ट्रेनिंग दे सकी ले। आदिवासी किसान के कंपनी हम लोग बनवा दिले है।
4: अच्छा।
3: SPO किसान उत्पादक संघ और किसान के दलाल से बचत के लिए किसान जो बा कंपनी के द्वारा अपन सामान उठा के बेच सकन है।
4: तो जो लोन के 150 लोन के आप कहत हन की लगौले हन, तो लोग के आप का कुछ संदेश देवल चाहिए?
3: संदेश हम यही देवल चाह ली कि कम से कम जितना बागवानी

0: है और लगातार ओमे किसान जागरूक तो बहुत हन, जागरूक हो रहा हन, लेकिन और बढ़िया से होके कम से कम बनाव भाग लेवल और पूरे और समाज में इस चीज के फैलावत, ताकि हर आदमी अपन जमीन पर जनवा की आजीविका फैला
1: सके
0: और ताकि बाहर न जाए के पड़े। और 10,000 हमें जब 15,000 अपन डेढ़ बीघा जमीन जब कमाए के मिल जाए, हम काहे लिए बाहर जाए।
1: ये भैया रहा देखा पेड़ पौधा के लगावे के बाद और कहल भी जाला कि हर खेत पर मेड़, हर हर मेड़ पर पेड़ लग जाए, इतना बढ़िया जानकारी देवे खातिर अरविंद कुमार तिवारी जी के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद बा भोला भैया आपके साथ अरविंद कुमार तिवारी जी के, जो उनकी कृषि आधारित बागवानी से आय में वृद्धि के तरीका से करल जाए विषय पर बातचीत आप लोगन के सुन के हम लोगन जरूर अमल करल जाये। और अपन जो नौदा किसान भैया बहन लोगन हुआ उनके खातिर तो बढ़िया ही फायदा मिली एकदम से जानकारी के माध्यम से, तो भाई धन्यवाद देवल जाए। लेकिन देखे आज मधुपुर मंडी से जो आपके पाती लगल बा अपने पुनवासी चौहान भैया का, तो जान लिया जाए कि कौन जिन कौन कितना मतलब कैसे भाव चल रहा बा बतावे।
3: अब देखा भेजले हन तो कुंतल में भेजले हन,
2: कुंतल में हाइये होला मधुपुर मंडी के,
3: मधुपुर मंडी के। देखा आलू लाल हो आपका 1200 रुपया कुंतल, सफेद आलू 1000 रुपया कुंतल, टमाटर 2500 रुपया, परवल आपका 3000, बोड़ा बा 2000, गोल वाला बैगन बा 4000 और लंबा वाला बैगन आपका 2200 रुपया, लौकी आपका 1000 बा, कोहड़ी 800, भिंडी 1700, करेला 3500, नेनुआ 2200, खेक्सा आपका जो ना कि 6000, प्याज आपके 2800, लहसुन आपका 10000 रुपया कुंतल हो, मिर्चा आपका 6500 रुपया बा, धनिया 8000 बा, पालक 1500 हो, चौराई आपका 1200 है और खीरा आपका देखा 3500, पपीता 2000 बा, सूरन 4000 बा, अरुई 2500 रुपया बा, कुंदरू 1800 रुपया बा, शिमला मिर्च आपके देखा 6000 हो, कटहल 1500 है, मकई जो ना की 1000 बा, मूली 2000 बा, और देखा सैकड़ा में बा आपके फूल गोभी 3500 रुपया सैकड़ा।
2: अच्छा
3: फूल गोभी और पत्ता गोभी आपके 3000 हो, नींबू बा आपके 300 रुपया सैकड़ा। ये आज के मधुपुर के ताजा बाजार भाव बा।
2: तो अपने देखा पुनवासी चौहान भैया के भी सहयोग जो मिलत रहेला बराबर, कभी कभी अपन देखा रापणगंज मंडी भेल चाहे अपन घुरावल मंडी भेल, तो सबकर सहयोग से ही अपन पंचायती हो चाहे अपन किसानवाड़ी के बैठकी हो चलत रहेला। और कुछ न कुछ सबके सीख मिलत रहेला कि भैया देखा अपन सौदा जहाँ बढ़िया भाव मिले वहाँ लेके पहुँचल जाए, तो भैया के धन्यवाद और ऐसे सहयोग बनौले रहे। लेकिन धन्यवाद स्वरूप हम तो कहते ना मनोज कुमार चौबे भैया के गावल इकठे जन बाकी मन फिर और हो जाओ
3: तो चला सुना जाए।

0: तो देखा हो जीरा बहिन अपन मनोज कुमार चौबे भैया देखा कितना बढ़िया मन फेर सुनौला। हाँ भैया देखा मन फेर के माध्यम से वो संदेश भी कह देला कि गौवा के लोग मजेदार। और
1: हाँ
0: देखा गौवा सहरिया से तो बड़ा निक बटले बा, लेकिन एक काम में देखल जाए ना जीरा बहिन,
1: हाँ
0: गांव हो के चाहे शहर, ये
1: हाँ
0: जो जनसंख्या वृद्धि का जो होड़ इस समय चल रहा बा, इस समय का मतलब जन जनसंख्या वृद्धि बढ़ रहा बा दिन ब दिन, कहीं
1: हाँ
0: ना कहीं देखा गांव चाहे शहर कहीं ना कहीं सबके खातिर समस्या को उत्पन्न करे वाला
1: बिल्कुल
0: जन कारण बन रहा बा। तो ये पर थोड़ा सा हम लोगन के सोच विचार करे के जरूरत बा।
1: बिल्कुल, कहे का मतलब ये बा कि हम लोगन के माने कि परिवार नियोजन के अपनावे के चाहिए। जैसे कि हम लोगन के माने कल गले कि एक हो या दू हो, उसे ज्यादा तीन ना हो, एकरे खातिर देखा तमाम सुविधा भी बा कि परिवार नियोजन किसकी वजह से हम लोग कैसे बचल जा सकेला। तो देखा गर्भ निरोधक जोन माने साधन के उपयोग कैले से बच्चा लोग जोन माने सीमित करे के बा, और बच्चन के जन्म के माने बीच में सही अंतराल रखे के है, तेकरे खातिर देखा बहुत सारा चीज है। आपका कंडोम हो गल, आपका गर्भ निरोधक गोली हो गल, कपर्टी हो गल, नसबंदी हो गल, और माता और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के देखा बेहतर बनाव में मदद करेला। इतने भर नहीं, आपके परिवार नियोजन से देखा हमन के बतासा बहन बहुत सारा लाभ है। माने कह
0: बिल्कुल
1: गल कि माँ और बच्चा का देखा स्वास्थ्य भी अच्छा रही, माने 3 साल का अगर अंतराल पे एक हो गई दूसर तो उनमें देखे के पड़ी, और बच्चन के जन्म के बीच में ही कल गल कि माँ का शरीर का भी स्वस्थ रहना जरूरी है, और बच्चा के पूरा पोषण भी मिले, और बेहतर जीवन की अगर बात कर लिया परिवार सीमित होए पे तो माता पिता बच्चा अगर हैं तो कल गल ना कि अच्छी शिक्षा खान पान और
0: बिल्कुल
1: उनकर जोन पूरा जरूरत बाओ के भी हम लोग पूरा कर सकीला।
0: बिल्कुल कहा जा रहा ना कि छोट परिवार खुशहाल परिवार,
1: बिल्कुल
0: छोटा परिवार सुख का आधार,
1: हाँ
0: कई तरह का देखा बात कहल जाला। तो ये बिल्कुल सही है कि देखा जब परिवार सीमित रहेला छोट रहेला तो
1: हाँ
0: हर सुख सुविधा हर जरूरत की चीज जोन बा हर खुशी जोन बा वो
1: हाँ
0: देखा बढ़ेला। और
1: बिल्कुल
0: जहाँ परिवार नियोजन के साधन नहीं अपनावल जाला वहाँ दिन ब दिन जनसंख्या के वृद्धि हो रहा बा, उसे परेशानी खड़ा होला कि
1: एकदम सही
0: देखा
1: बात
0: जनसंख्या वृद्धि मतलब 8 गो 10 गो जहाँ लड़का लड़की हवन। अच्छा जीरा बहन देखा कुछ लोग होलन का कि मतलब बेटा के चक्कर में लोग बेटी पैदा कर चल जाना,
1: बिल्कुल
0: लेकिन आज के जमाना में तो देखा चाहे बेटी हो या बेटा हो
1: हाँ
0: कहीं भी बेटी बेटा से कम नहीं है।
1: बिल्कुल। मान कहे का मतलब ये कि अगर हम दोनों बेटा बेटी के बराबर का दर्जा दे दिला तो निश्चित रूप से कल गला कि बेटा से भी बेटी जो ना कि देखा आगे बढ़त हैं, और कल गला ना कि आज के समय में अगर शिक्षा उनके अच्छा मिला तला तो कल गला कि उनका जोन भविष्य हुआ वो उज्ज्वल हुई, और जोन 8-10 बच्चा के बात के लिए देखा वो पहले जमाने के बात रहा, आज के सभी लोग इस मामले में जागरूक हो गलन कि ये महंगाई में और ये स्थिति के देखते हुए कि हमें आगे अपने बच्चों के कैसे बढ़ावे के बा और कैसे माने देखभाल करे के बा, तो ओकरे खातिर हम लोगन के जोन कहता है कि माने कि एक परिवार में जो ना कि 2 बच्चा हो या एक बच्चा हो तभी जाके आपका भविष्य उज्ज्वल हुई।
0: बिल्कुल जीरा बहन, लेकिन सब लोग जागरूक तो बा लेकिन फिर भी एकर सदुपयोग लोग नहीं करेला। कहीं कहीं कहल जाला ना कि एगो मछरी पूरे तालाब के गंदा कर देला,
1: हाँ
0: वही तरह से अगर एक दो परिवार भी अगर ये तरीके के बात पर ना ध्यान देते हुआ तो कहीं ना कहीं देखा समस्या परेशानी होबे करला।
1: बिल्कुल
0: तो देखा शत प्रतिशत हम तो कहते हैं कि हर परिवार में हर मनसेदु घरेती लोगन के समझे के जरूरत बा कि छोट परिवार रही तो हर तरह के सुख सुविधा सरकारी योजना के लाभ मिल सकी।
1: बिल्कुल
0: और अब तो देखे हैं सरकारी भी लागू कर देले कि जेकर माने एक के दूगो लड़का हो उन्हें के हर सरकारी योजना के लाभ मिले और उससे ज्यादा हुआ तो उनके लाभ ना मिली। तो
1: बिल्कुल
0: देखा हर चीज के जाने और समझे के जरूरत बा। हम तो कहा कि चला चला बस इतने ही है कहा कि परिवार नियोजन के तमाम तरह कैसन साधन बा जौन भी आपकी सुविधा लगे
1: माने
0: जानकारी
1: अच्छा
0: लेके
1: लगे।
0: के
1: हाँ
0: ओके जरूर अपनावे और खुद भी खुश रहे परिवार समाज के भी खुशहाल
1: बिल्कुल,
0: रखे।
1: और देखा अपन पंचायती जो ना कि समेटे समेटे का समय तो होत हला,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: लेकिन
1: चले से पहले जोन हो कि आप जोन बरखा बुन्नी होला
0: हाँ
1: उनमें देखा हम लोगन के अपने स्वास्थ्य के सही रखे के बहुत जरूरी
0: तो
1: बा।
0: बिल्कुल खुद भी स्वस्थ रह सुरक्षित रह और बरखा बुनी से बचे के खातिर अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता जोन भी खान पान बा ओके हमेशा बरकरार रखे बनौले रखे। तो अगले पंचायती में फिर नए जानकारी नए मन फिर के साथ जुटल जाए। तो चल जाए आज
1: तो सब पंचन के
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम।

0: मैंने
1: आप सभी श्रोताओं को लक्ष्मी सिंह का प्यार भरा नमस्कार। फिल्म संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी ओबरा परिवार की तरफ से मुकेश जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और आइए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे आनंद फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं सबक फिल्म से।

0: मुकेश की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जिंदगी और तूफान फिल्म का गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए देते हैं आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आपकी जानकारी के लिए पहले सूचना। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिभा सोनी, संरक्षक विभा देवी, निवासी कोन, थाना कोन, जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 5 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, गोरा रंग, इकहरा बदन, नाक कान औसत, नीला सूट और कत्थई सलवार बिना चप्पल पहने हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। एक और खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आशा देवी पत्नी नंदलाल निवासी ग्राम दुमहान थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र जो दिनांक 2/3/2026 से लापता हैं। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फीट, सांवला रंग, गोल चेहरा, दोहरी बदन, काले बाल, साड़ी और ब्लाउज हरे रंग का और पैरों में चप्पल पहने हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए देते हैं आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपकी जानकारी के लिए। शाम 7:31 पर कानून की बात हमारे लखनऊ केंद्र से इसका अनुप्रसारण किया जाएगा। रात 9:30

मुखर्जी का राग चंद्रकोंस में सितार वादन। तो ये थी आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आपकी जानकारी के लिए हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व, ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्री मणिरामदास छावनी में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट के महासचिव कृष्णमोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
2: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
1: ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की

0: यह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। बैठक में चढ़ावा गणना व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विद्यार्थियों की आकांक्षाएं पूरी करने और युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी।
0: रक्षा मंत्री ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार ने प्रत्येक मुद्दे पर सार्थक बहस करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतरकर मुद्दों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कल नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है।
2: जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इसे नाले चोक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया के अंदर एकमात्र एक राजनीतिक दल के रूप में, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हुए सुशासन लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी एक मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सही सोच और राष्ट्रहित की भावना विकसित करना भी है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का आज बागपत के बड़ौत में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रदेश के

0: समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। श्री अरुण ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री धनखड़ का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मिला था। ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का कल से शुभारंभ होगा। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 10 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए दौर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। वहीं कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतमबुद्ध नगर में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 18 बाढ़ चौकियां और 18 बाढ़ शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन की टीमें सतर्क हैं और जल भराव वाले इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं घरेलू हिंसा संबंधी कानून, इस विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी दे रहे हैं यश शर्मा और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
4: कानून की बात।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात में कीजिए स्वीकार राघवेंद्र का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा परिवार होता है, जिसमें पति पत्नी होते हैं, वो गाड़ी के 2 पहियों की तरह काम करते हैं। अगर कोई भी पहिया संतुलन नहीं बना पा रहा है तो जो परिवार रूपी गाड़ी होती है वो नहीं चल पाती है। और अगर उसके साथ हमारा परिवार भी है, माता पिता भी हैं, उनमें भी अगर मानसिक सामंजस्य नहीं बन रहा है तो ऐसे में स्थितियां कई बार परिवार की गड़बड़ हो जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो महिला पक्ष है उसको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ जाता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, तो इसे हम घरेलू हिंसा का नाम देते हैं। घरेलू हिंसा के लिए कानूनी तौर पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, कानून की मदद ले सकती हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय श्री आयुष शर्मा जी। आयुष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: नमस्कार
5: आयुष जी। सबसे पहले तो

0: ये जानना चाहेंगे कि आखिर कानून की नजर में घरेलू हिंसा क्या है।
1: घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा को परिभाषित करता है जो एक परिवार के भीतर होते हो। हिंसा जैसे कि समाज के बाहर भी होता है, उसके लिए अलग प्रावधान है। एक जो हिंसा परिवार के भीतर होती है, उस हिंसा से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए सन 2005 में एक एक्ट हुआ, उसको घरेलू हिंसा अधिनियम कहते हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य जो था इस एक्ट का, कि जो महिलाओं को घर के अंदर किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उससे उनको कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए।
0: जी आयुष जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रताड़ना के अंतर्गत क्या मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़नाएं आती हैं?
1: जी, इस अधिनियम में प्रताड़ना के अंतर्गत चार तरीके की प्रताड़नाएं आती हैं। जी, एक पहली होती है शारीरिक, इसमें किसी को मारपीट करना या उसके अंग को या उसके अन्य किसी शरीर के हिस्से को क्षति पहुंचाना, एक शारीरिक हुआ। दूसरा होता है एक मौखिक या भावनात्मक, जैसे किसी को टॉन्ट मारना, किसी का मजाक उड़ाना। पर्टिकुलरली इन केसेस में, जिसमें आप पहले के समाज को देखेंगे तो महिलाओं को, जैसे मेल चाइल्ड नहीं होता है, अगर बालक पैदा नहीं होता है, तो उनको जनरली घर में टॉन्ट का सामना करना पड़ता था। इस चीज को भी इसमें हिंसा का रूप दिया गया है। तीसरा अगर एक है आर्थिक हिंसा, आर्थिक दुरुपयोग कहते हैं, कि जैसे एक महिला को घर की घरेलू चीजों के लिए, बेसिक खर्चों के लिए पैसे की जरूरत है, अगर वो उसको नहीं दिया जा रहा है, तो उसको भी एक हिंसा का रूप इस एक्ट में माना गया है। चौथा एक है लैंगिक दुरुपयोग, या इसको सेक्सुअल क्रुएल्टी बोलते हैं। इसमें किसी भी महिला की गरिमा को, जो उसको कम करता है, उसको भी एक हिंसा का रूप दिया गया। तो इस एक्ट में कई सारी चीजों को सम्मिलित किया गया है।
0: यदि ये पाया जाता है कानूनी तौर पर कि किसी व्यक्ति ने या परिवार के किसी सदस्य ने महिला पर हिंसा की हुई है, तो ऐसे में इस अधिनियम के तहत क्या सजाओं का प्रावधान है?
1: देखिए, आपको बेसिक चीज बता दूं, जैसे घरेलू हिंसा जो है, ये एक सिविल लॉ है। इसमें किसी अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें कुछ तरीके की सुरक्षाएं प्रदान की गई है घर में रहने वाली स्त्रियों को, वो एक सिविल रेमेडी है। मतलब अगर कोर्ट ऑर्डर का पालन नहीं होता है, तब उसको अपराध कर दिया गया। ये एक्ट है एक सिविल रेमेडी, इसमें किसी तरीके का अपराध परिभाषित नहीं होता है। इसमें पांच तरीके का प्रावधान है। पहला है एक प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, इसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई स्त्री भी अगर किसी महिला को प्रताड़ित करती है, मारती पीटती है, उसको रोका जा सकता है ऐसा करने से। अगर वो पुरुष है तो उसको घर से एंट्री करने से मना किया जा सकता है, ये प्रोविजन है। दूसरा इसमें प्रोविजन है राइट ऑफ रेसिडेंस का, निवास का, कि अगर महिला अपने परिवार के किसी सदस्य से पीड़ित है, तो एक अल्टरनेटिव हाउस की मांग कर सकती है, इसमें ये प्रोविजन है। और तीसरा प्रोविजन है एक मेंटेनेंस का, जैसे आपने मेंटेनेंस 125 CRPC में चलता है, तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में कोई चल रहा है, उसके बेसिक खर्चे, उसके लिए भी वो अंतोष की मांग कर सकती है। और एक है कस्टडी की मांग, कि अगर उस महिला का कोई बच्चा है, मेल है चाहे फीमेल है, अब वो चाहती है कि जो पीड़ित करने वाला व्यक्ति है, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको ना दिया जाए या उसको ना मिलने दिया जाए, तो राइट ऑफ कस्टडी की मांग भी वो कर सकती है। एक और है कॉम्पनसेशन का मांग, प्रतिकर की मांग, कि उसके जो खर्चे हुए हैं, जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, शारीरिक प्रताड़ना हुई है, उसके लिए भी अलग से वो खर्चे की मांग कर सकती है। इस तरीके से इस प्रावधान में पांच तरीके की जो रेमेडीज है, उपचार है, एक महिला को उपलब्ध होती हैं।
0: यानी कि महिला के जीवन को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे आपने बोला कि आवास की मांग कर सकती है, वो मेंटेनेंस चार्जेस की मांग कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई महिला जो कि पहले से ही कार्यरत है कहीं पर, वो अपनी अर्निंग कर रही है, वो इतना पर्याप्त पैसा कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये डिमांड उसे रखने कोई आवश्यकता नहीं होगी कि ऐसे में भी वो डिमांड रख सकती है?
1: जी हाँ, इसमें क्या होता है कि तलाक का मुकदमा चल रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी वो प्रतिकर मांगते हैं, तो इस एक्ट में प्रतिकर मांगने का प्रावधान है। तो ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से मजिस्ट्रेट देखते हैं जो बैठे रहते हैं। अगर वो खुद ही कमाने में, महिला अगर गवर्नमेंट जॉब कर रही है या कोई जॉब कर रही है, जैसे वो अपने आप में एबल है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको प्रतिकर मिलेगा ही मिलेगा।
0: आयुष जी, यदि किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक या शारीरिक तौर पर, अगर वो इस अधिनियम के तहत अपनी सुरक्षा चाहती है, तो उसे सबसे पहला कदम क्या उठाना होता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती है, अपनी सुरक्षा कर सकती है?
1: जी, इसके लिए सबसे अच्छा प्रोविजन, जैसे कि अगर वो घर में हो रहा है, अभी कोर्ट नहीं जा पा रही है, तो सबसे बेसिक होता है डायल 100 या डायल 112 जो होता है करके, पुलिस से प्रोटेक्शन ले सकती है। उसके बाद वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है कंसर्न मजिस्ट्रेट के थ्रू, तो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित हो जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए। उसमें विभिन्न तरीके की चीजें आ जाएंगी, सुरक्षा किस तरह से दी जाए। कोर्ट एक पीओ भी अपॉइंट करती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर।
0: जी, कई बार ऐसा होता है कि

0: उस महिला को जो प्रताड़ित हो रही है वो समझौता कर रही है, जबकि ऐसी स्थिति है जहां उसे समझौता नहीं करना चाहिए पर वो किसी तरीके से समझौता करती जा रही है। और उस महिला के घर वाले हैं यानी महिला के माता पिता भाई बहन ये देख रहे हैं, और वो महिला जो प्रताड़ित हो रही है वो तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रही, शिकायत दर्ज नहीं करा रही, तो क्या उसके परिवार वाले इस बात को समझते हुए कि भाई मामला बहुत गंभीर हो चुका है, क्या वो अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
1: जी हाँ, जो ये प्रावधान है महिलाओं के सुरक्षा के लिए है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि पीड़ित महिला अगर इन केस में नहीं पहुंच पा रही है, तो आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, आदमी अपलोड कर देता है जैसे भी हो, और उसके जो सदस्य हैं वो भी कर सकते हैं
0: जी।
1: और ये जो एक्ट है ये बहुत ही विशाल है, बहुत एक वृहद एक्ट है।
0: अक्सर हम लोग जब घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इस अधिनियम के तहत महिला सुरक्षा की बात कही गई है।
1: 498 ए में क्या है कि पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता की जाती है, इस अधिनियम में कोई भी महिला संरक्षण की बात कर सकती है
0: जी,
1: तो सिर्फ पत्नी होना उसके लिए जरूरी नहीं है, सारे धर्मों पे एक समान रूप से अप्लाई होता है
0: जी। आयुष जी, हम कई बार ये भी देखते हैं कि पुरुष को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, शादीशुदा होने की स्थिति में भी कई बार जो उसकी पत्नी होती है वो उसे शारीरिक या मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रही है, या घर के अन्य सदस्य किसी वजह से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे में पुरुष अपना बचाव कैसे कर सकता है?
1: देखिए, जो ये अधिनियम है इसमें जो पीड़ित की परिभाषा दी गई है उसमें लिखा है एनी वुमन, कोई भी महिला, तो और इसका नाम भी है कि महिलाओं से महिलाओं को हिंसा से संरक्षण, तो इस एक्ट में पुरुष के उपचार के लिए कोई अधिनियम नहीं है
0: जी।
1: लेकिन वो चाहे तो अन्य जैसे आईपीसी की धाराओं में अपने लिए वो उनके पास प्रूफ है या कुछ है अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, आईपीसी की धाराओं में कर सकते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 वो भी क्रुएल्टी की बात करता है, उसमें पुरुष भी क्रुएल्टी के आधार पर तलाक ले सकते हैं
0: जी।
1: और मारपीट की कोई घटना होती है तो आईपीसी की अन्य धाराएं सुसंगत हैं जो मारपीट की सारे सारे जेंडर पे एक समान रूप से लागू होती हैं। और आप देखेंगे माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में पुलिस को भी ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन इश्यू किया है। सबसे ज्वलंत केस है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य का, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बोला है कि इफ दे हैव रीजन टू बिलीव कि जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो सही है, उसके खिलाफ हिंसा हुई है, तभी एफआईआर दर्ज करें
0: जी,
1: एक बार प्रिमली जांच कर लें। और एक ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है, इसमें भी मैट्रिमोनियल मैटर्स में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को एक प्रिमली इंक्वायरी कर लेना चाहिए था, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है
0: जी। आयुष जी, कई बार ऐसा भी होता है कि इस अधिनियम का या जो अधिकार दिए गए हैं उसका मिसयूज किया जाता है, और अगर ऐसा न्यायालय द्वारा पाया जाता है कि उस महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जो उसने बोला हुआ है, तो ऐसे में क्या महिला को भी सजा देने का प्रावधान है या महिला को भी दंडित करने का प्रावधान है?
1: इस अधिनियम में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
0: जी,
1: इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है, लेकिन अब जो किसी के खिलाफ गलत हुई है तो वो मैलिस प्रोसिक्यूशन या फाल्स इंप्रिजनमेंट का केस एक बार कर सकता है
0: जी। आयुष जी, यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई पेयर रह रहा है, कोई जुड़ा रह रहा है, और वहां ऐसी कोई समस्या आती है किसी महिला के साथ, तो क्या इस अधिनियम के तहत वो अपनी सुरक्षा की मांग कर सकती है?
1: ये प्रश्न उठा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में
0: जी।
1: इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था इंदिरा शर्मा वर्सेज वीके शर्मा, ये 2014 में आया था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू किया था कि ये सारी चीजें होंगी तो उसको लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा, एज अ कैजुअल जैसे वीकेंड स्पेंड करना या हम बस रेंट पे साथ में रह रहे हैं उसको नहीं माना जाएगा। इसमें ये था एक समाज में दिखना चाहिए ऐसे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, बेसिक खर्चे अपने शेयर कर रहे हैं, परिवार घर को भी एक एज अ परिवार की तरह शेयर कर रहे हैं, ये 2-3 चीजें दी थी। अगर ऐसे कंडीशंस हैं फुलफिल्ड हैं,
0: यानी कि इस अधिनियम के तहत कोई जो महिला है वो अपने अधिकारों की मांग कर सकती है, अपने आप को इससे सुरक्षा प्रदान कर सकती है इस अधिनियम के तहत
1: जी।
0: आयुष जी, यदि कोई महिला जिसकी शादी हो गई है अपने पति के साथ रह रही है, उसके परिवार के अन्य सदस्य भी वहां रह रहे हैं, अगर वो महिला जो कि हिंसा का शिकार हो रही है, तो क्या वो महिला अपने पति पर ही दोषारोपण करेगी कि इसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, या जो अन्य सदस्य लोग भी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं उन पर भी वो केस कर सकती है? क्या अन्य सदस्यों में वो सदस्य भी आ सकते हैं जो उनसे दूर तो हैं लेकिन मोबाइल फोन के माध्यम से हो सकता है उसे कॉल करके परेशान कर रहे हो?
1: जैसे कि अगर किसी परिवार के अन्य सदस्य के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो हिंसा कर रही है, क्रूरता कर रही है या क्रूरता कर रहा है, तो हमें 2 चीजें देखनी होंगी। एक, जो उनके खिलाफ एलिगेशंस लगे होंगे वो स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए कि मुझे गाली देते हैं या मारते पीटते हैं, दहेज की मांग करते हैं। दूसरा, उनका रोल डिस्क्लोज होना चाहिए
0: जी।
1: इन दोनों चीजों को, जैसे जनरली केसेस में क्या होता, फैमिली मैटर्स में क्या होता था कि परिवार के सारे सदस्यों के नाम लिख दिए जाते थे
2: जी,
1: तो सारे मुलजिम हो जाते थे। तो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2012 में एक केस आया था, गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एज ए कैजुअली नहीं नेम कर देना चाहिए एफआईआर में
2: जी।
1: उनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस होने चाहिए और वो लगे कि हाँ वो उन्होंने ऐसा किया है। सिर्फ नाम लेने से उनको मुलजिम बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है
0: जी। आयुष जी, घरेलू हिंसा अधिनियम संबंधी प्रावधानों पर आपने एक विस्तृत चर्चा की, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपने सुनी घरेलू हिंसा संबंधी कानून, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे आयुष शर्मा और भेंटकर्ता थे राघवेंद्र सिंह। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अगर आप आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522-453020-7, 0522-453020-7।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान विविध
5: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं मिले जुले फिल्मी गीतों का सबरस कार्यक्रम।

0: सबरस कार्यक्रम में अभी आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में प्रेम कहानी फिल्म का गीत। श्रोताओं, आज है मुकेश का जन्मदिन और हम एक से बढ़कर एक मुकेश के गाने लेकर आज हाजिर हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा संसद में हुई कार्यवाही की समीक्षा। आइए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र और सुनते हैं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई। जी हाँ श्रोताओं, महिलाओं का श्रृंगार के
2: निकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मानसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार 3rd दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराहन 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से ही बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और

0: और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध।
1: तो श्रोताओं, आपका इंतजार हुआ खत्म और हम लेकर आ गए फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। जैसा कि आज है मुकेश जी का जन्मदिन और आकाशवाणी ओबरा परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और सुनते रहिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे कैफी आजमी की रचना को। फिल्म थी एक हसीना दो दीवाने और आवाज लता मंगेशकर के साथ मुकेश की। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ मुकेश को कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, रचना इंदिवर की और फिल्म मेरे हम सफर।

लता मंगेशकर, मुकेश के गए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम। आगाज करते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह के आवाजों के साथ, रचना राजेश जौहरी की।

0: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान,
1: स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चुर्क और घोरावल के साथ ही साथ उच्च शिक्षा में लाया है बेहतर विकल्प।
0: स्वामी हरसेवानंद पीजी कॉलेज चुर्क में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए,
1: एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। ज्ञान, संस्कार और सफलता की सशक्त पहचान,
0: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान।
2: इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद आप 9:00 सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। आइए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र और सुनते हैं समाचारों का अनुप्रसारण।
3: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
5: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
6: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है।

0: चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
4: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।

0: अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्रों के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप सूचकांक

0: मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे होली आई रे फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में इंदिवर की रचना को। संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म थी उपकार। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्रोताओं, रात 10 बजे हम लेकर आएंगे रसधारा कार्यक्रम। इसमें हम आपको सुनाएंगे मुकेश के गाए हुए कुछ चुनिंदा गीत। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा चर्चा का विषय है कार्यक्रम। आइए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र और सुनते हैं चर्चा का विषय है कार्यक्रम।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
3: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है या Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ हैं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
2: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
0: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा जो बड़े ब्रांड बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे छोटे शहर वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्शन है उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं महानगरों में नहीं जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पे जो लोग एक तरीके से अपनी उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेड करने तक मार्केटिंग के तक वो इस स्कीम की खास जो खूबी है और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन इसमें हुए हैं तो ये अपने आप में या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग
2: जी
0: इस तरीके के। उदाहरण जैसे दो उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में। जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं,
2: जी।
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो GDP का करीब 7% 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
2: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
3: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप

0: करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई तेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में, हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फिनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहाँ मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है,
1: जी
0: लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है। मैं
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं, क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले, तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है। और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत

0: हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स में बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके चना में, मक्का में और बहुत सारी, या जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से। उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
2: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती। हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती। फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही है। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो तो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती है आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मैं जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही हैं, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पर, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसने उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

0: और पीएमएफएमई के साथ में यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट। मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क्स और जो ये बड़ी पीएम किसान संपदा योजना के तहत बन रहे हैं, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बन रहे हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहाँ वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें। उसको जब आप इस पीएमएफएमई से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। सिर्फ मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात यह है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर अब ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़े इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासना जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती है बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया और उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं, तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं मिले जुले फिल्मी गीतों का संगम रसधारा कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि 22 जुलाई और आज मुकेश जी का जन्मदिन है। तो उनके बारे में क्या कहना, वो दर्द को भी गीत बना देते थे, एक सहारा थे गीतों के मुकेश, सुरों के आकाश का चमकता सितारा थे मुकेश।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में कुछ चुनिंदा गीत रसधारा कार्यक्रम में। जब भी उनकी आवाज गूंजी, दिल मुस्कुरा उठा, हर धड़कन ने कहा, हमारे प्यारे हैं मुकेश।

शुद्ध मुकेश के बारे में क्या कहा जाए, जितने शब्द उतनी कमियां। संगीत की दुनिया का उजियारा थे मुकेश, सादगी अपनापन और भावों का अनमोल संगम। हम सभी के शब्द कम पड़ जाएंगे मुकेश के लिए।

श्रोताओं, अगर हम मुकेश के बारे में कमियां निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। कमियां तो अच्छे लोगों में बहुत लोग निकालते हैं, फिर भी मुकेश इस बात की परवाह किए बिना आगे ऊंचाई पर चढ़ते रहे और उनको बहुत सारी कामयाबी मिली।

श्रोतों, उनकी मधुर तान आज भी हम सबके दिलों में बसती है। हर युग में अमर, हर दिल के प्यारे मुकेश।

श्रोताओं, चलते चलते हम यही कहेंगे कि स्वर भले थम गए हों लेकिन पहचान अमर है, भारत के संगीत का सच्चा अभिमान मुकेश। तो उनके जन्मदिन पर ये था रसधारा कार्यक्रम का विशेष कार्यक्रम। दीजिए लक्ष्मी सिंह को अनुमति। नमस्कार, हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित निखिल बनर्जी का राग चंद्रकौंस में सितार वादन। तबले पर आपके साथ संगत की है श्यामल बोस ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का राग चंद्र कौस में सितार वादन। तबले पर आपके साथ संगत की थी श्यामल बोस ने। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। आइए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र और सुनते हैं समाचार हिंदी में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह